FM 101.7 MHz पे हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संबद 1948, रावण माह की तिथि 19, तदनुसार 10 अगस्त ईस्वी सन 2026। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजेंगे, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appeal to the citizens to always cheer for भारत।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
3: Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Khadse were present on the occasion. India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents India has achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy in a statement said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. The ministry added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contributions across sectors. Solar energy remains the key growth engine. Jharkhand police has imposed prohibitory orders around the assembly premises and made elaborate security arrangements across Ranchi. The measures have been taken in view of today's Vidhan Sabha march called by students who have been protesting for more than 2 weeks against alleged irregularities in recruitment exams in the state. A prohibitory order has also been promulgated within a 750-meter radius of the Vidhan Sabha building from 6 to 12 of this month. Protesters allege that hundreds of students coming to the state capital from different parts of Jharkhand are being stopped by the police forcefully. The students' protest entered its 17th day today, while six of them are on hunger strike, protesting against alleged irregularities in recruitment exams. BJP leader Amar Bori alleged that the party's state unit president Aditya Sahu has been put under house arrest. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity and India's rich cultural heritage. The campaign encourages citizens to hoist the national flag and take part in activities that celebrate the spirit of patriotism and unity. This year's campaign is special as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate actively in the campaign and renew their commitment to building a Viksit Bharat. India has dispatched 8 metric ton consignment of life-saving and essential medicines to Bolivia in support of its public healthcare capacity. The External Affairs Ministry said in a social media post that India always stands ready for advancing cooperation through solidarity and shared progress. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाएं। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बनाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

और अब सुनते हैं ये अगली रचना लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर जानकारी लेने का। तो आइए जानकारी लेते हैं। अब से थोड़ी देर बाद हम सुनेंगे भक्ति सुगम संगीत में मौसमी नियोगी के गाए चंद गीत। सुबह 7 बजे हम सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8 बजे। प्रादेशिक समाचार के लिए हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र सुबह के 8:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक हम प्रसारित करेंगे सुबह के 8:40 पर। आज आप सुनेंगे उराव लोकगीत सुग्रा भगत और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम विविधा आप सुन सकते हैं सुबह के 9 बजे। विश्व जैव ईंधन दिवस पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। कार्यक्रम के साथ होंगी अंजू रानी देवगन। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन के 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में।

हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम के 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक को। शाम 5:30 पर आज सुनेंगे आप खेती गृहस्थी, इस कार्यक्रम के साथ आज होंगे सुरेश चंद्र सोई, DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन पर चर्चा होगी, साथ ही लोकगीतों का आनंद लेंगे, मछली पालन की नई तकनीक पर जानकारी आप इस कार्यक्रम में प्राप्त करेंगे। मुख्य समाचार सुनेंगे संध्या 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

शाम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा, वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं। इस विषय पर आप जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही स्वरोजगार से मालिक बनना, इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। बुधन सिंह हेसा से जानकारी आप लेंगे, साथ ही लोकगीतों का आनंद भी आप इस कार्यक्रम में लेंगे। कार्यक्रम के साथ होंगे महेंद्र गुइया। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:55 पर हम चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से शाम 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनेंगे विधानसभा समीक्षा। संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात्रि के 8 बजे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण हम करेंगे रात्रि के 8:15 पर। समाचार संध्या में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 8:45 पर। रात्रि 9:15 पर हम आपको पुनः शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। संसद में प्रश्नकाल का रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि के 10 बजे। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:10 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मौसमी नियोगी को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। आप सुन रहे हैं मौसमी नियोगी के गाए गीत।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जुहार चायवासा। कभी कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो, अपनी नज़र पे तुम क्या हो ये मन की तराजू पर तौलो। कभी प्रदीप की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम जुहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में, और अब सुनते हैं फिल्म बंदनी का गीत एस डी बर्मन के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनमोल घड़ी का गीत नूरजहां के स्वर में, और अब सुनते हैं हेमंत कुमार को फिल्म नागिन का ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दर्द का गीत उमा देवी के स्वर में। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। आराधना इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं एस डी बर्वन के स्वर में। आनंद बक्सी के बोल है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त के स्वर में फिल्म बाजी का गीत। और अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में, फिल्म खुशबू का ये खूबसूरत सा गीत।

परख इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत दिया था सलील चौधरी ने। आप सुन रहे हैं श्रोता आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। बहु बेगम इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में।

0: रात अकेली है, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

यादगार इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में, और अब सुनते हैं फिल्म ससुराल का ये गीत मुकेश की आवाज़ है।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं फिल्म ठाकुर जनरल सिंह का ये खूबसूरत सा गीत आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत अरशद भोपाली की थी, संगीत दिया था गणेश ने। तो इसी के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा से अब दीजिए राधा को इजाज़त। अगले कार्यक्रमों में पुनः होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: इसमें बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
4: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
5: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
6: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
7: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए

0: हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनी ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून तरफ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जल स्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges people to join Har Ghar Tiranga movement and hoist the tricolour at homes. India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
6: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
5: More on this in this report.
7: Ghar ghar tiranga, har ghar tiranga.
8: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. The ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya Path Tiranga, described by the ministry as a first of its kind initiative aimed at bringing Indians across the world together in a global celebration of the tricolour. The ministry has appealed to citizens to hoist the national flag at their homes and upload their selfies on the Har Ghar Tiranga website. The Har Ghar Tiranga campaign has emerged as a nationwide public participation initiative associated with Independence Day celebrations, encouraging citizens to display the national flag and express their connection with the country. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
5: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. More from our correspondent.
9: Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana, with enthusiastic participation from students, sportspersons, NCC cadets and citizens. In Thane, a cycle rally also promoted environmental conservation and healthy living. In Buldhana, awareness was created about tuberculosis and drug-free India through rallies and street plays. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
5: In Bihar, Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the campaign. Our correspondent reports that Chief Minister Samrat Chaudhary will lead the march.
10: Organized by Department of Art, Culture and Youth, the march will begin at 10 a.m. from J.P. Golambar and proceed to Kargil Chowk. Several state ministers, legislatures, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Meanwhile, under the Har Ghar Tiranga campaign, 4,000 tricolor flags have been provided to every block in the state through Jeevika. Various activities including collective singing of Vande Mataram, blood donation camps, tricolor exhibitions, selfie with Tiranga and Tiranga Rangoli will also be organized as part of the campaign. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
5: In Kolkata also, a Tiranga Yatra is being organized today. Our correspondent reports.
11: A Tiranga Yatra is being organized in Kolkata today as part of the Har Ghar Tiranga campaign to encourage people to display and honor the national flag. Chief Minister Shubhendu Adhikari will lead the procession, which will begin at noon from Goshtopal Sharoni and culminate at the Victoria Memorial. Ministers from various departments, senior administrative officials, citizens are expected to participate. The Kolkata police has announced traffic restrictions in several parts of the city in view of the procession. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents that India has achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. A report.
12: The Ministry of New and Renewable Energy said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. It added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contribution across sectors. In the total non-fossil fuel capacity of the country, solar energy has remained a key growth engine with around 165 gigawatts of installed capacity at present. With Anand Samar Singh for Akashwani News, Delhi.
5: In the Lok Sabha today, four bills are listed in the business of the House for introduction. They include the Tribunals Reforms Bill 2026, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, the Kerala Alteration of Name Bill 2026, and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. In the Rajya Sabha, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will move the Bankers Books Evidence Bill 2026 for consideration and passing today. The bill seeks to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 is also listed in the business of the House for consideration and return. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Indian Navy and U.S. Navy Explosive Ordnance Disposal EOD Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command Kochi from today till the 14th of this month. The Defense Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. The five-day exercise will comprise subject matter expert exchanges, cross-training, equipment demonstrations and scenario-based practical exercises. Despite three rounds of talks between the students and the Jharkhand government over alleged irregularities in the JPSC-JSSC examinations, the deadlock continues. The students have not fully accepted the government's proposals and remain firm on their program to Gherao, the Vidhan Sabha today. More from our correspondent.
9: The student agitation in Jharkhand over alleged irregularities in recruitment examinations entered its 17th day today. Three rounds of talks between the students and the Jharkhand government focused
13: focused on investigation into the alleged irregularities, cancellation of affected examinations, action against those responsible, and reforms in the examination system. The government has agreed to cancel the 14th JPSC preliminary examination and the backlog examinations and has assured a detailed investigation into examinations conducted by TDPL and action against those found responsible. CID ADG Manoj Kaushik has assured a fair

0: बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचे, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, सरकार ने अधिकांश मांगे मानी, जेएसएससी परीक्षाओं पर कोर्ट के आदेश पर फैसला संभव। राज्य के जिला कोषागारों से अवैध निकासी के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का लिया निर्णय। अब बैंक खाता और पैन सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। राजकीय श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में सुबह 8 बजे तक 70,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बना हुआ है। आंदोलन के 16वें दिन तीसरे दौर की वार्ता में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि सभी मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनने के कारण छात्रों ने आंदोलन जारी रखने और विधानसभा घेराव का निर्णय जारी रखा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच के बजाय 90 दिनों में जांच पूरी कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करने के पक्ष में है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कल देर शाम प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 2023 और 2025 परीक्षा रद्द होगी। टीडीपीएल कंपनी ने जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उनकी जांच सीआईडी करेगी, जबकि सरकार वित्तीय गड़बड़ी के मामलों की जांच ईडी से कराएगी।
2: बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंघ मांगों को सरकार ने मांगा, जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी।
0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में आज के प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कचहरी चौक से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। इधर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या विरोध करना प्रतिबंधित है। प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हजारीबाग, बोकारो और पलामू समेत विभिन्न जिलों के कोषागारों से अवैध निकासी मामलों के बाद राज्य सरकार ने सरकारी भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया है। भुगतान प्राप्त करने वालों के बैंक खाते तथा पैन का ऑनलाइन और वास्तविक समय में सत्यापन किया जाएगा। बैंक खाते के विवरण में गड़बड़ी या खाता संख्या का मिलान नहीं होने पर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली से भुगतान रोक दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
4: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
5: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर, दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
4: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में भू धसान की घटना के बाद भी बीसीसीएल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी कल छाताबाद पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
6: जिला प्रशासन को जानकारी है, हमारे सारे पदाधिकारी आए हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि बहुत बुरा हाल है और घर गिर गया, भूदशान हो गया, तो अब विस्तृत रिपोर्ट हम बनाएंगे और जिनका घर गिरा है उनको आशियाना हमारी सरकार देगी। बीसीसीएल क्या कर रहा है? इलीगल माइंस हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है और आप चुपचाप है।
0: सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर और राज्यभर के शिवालयों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देवघर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह 8 बजे तक करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
7: हर हर महादेव। बाबा नगरी देवघर में राजकीय सावनी मेला की दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। रात 1 बजे ही बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलार्पण के लिए कांवरियों का कतार नंदन पहाड़ से चमरी डीपुल तक पहुँच गयी है। सोमवार सुबह पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार जलाभिषेक के लिए लगी है। भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर QRT पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती 24 घंटे की गई है ताकि हर कांवरियों को सुरक्षित और सुगम जलार्पण का अनुभव मिल सके। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। रांची की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी आद्या बुधिया ने हांगकांग जूनियर स्क्वॉश ओपन 2026 के बालिका अंडर 17 वर्ग में चैंपियन बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का नाम रोशन किया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 5 मुकाबले जीते। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों और सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता में भी अंतिम सहमति नहीं बनने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने और ईडी से जांच पर राजी, नहीं माने छात्र, आज विधानसभा मार्च की चेतावनी। दैनिक भास्कर ने सीआईडी से पूछताछ में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के खुलासे की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है, ख्यांगते की एजेंसी से डील, 2 करोड़ एक मुश्त और 20% कमीशन। जेपीएससी विवाद पर

0: आयोग के अध्यक्ष के बाद अब जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पेज पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान ने आदिवासी महोत्सव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, धरती पर आदिवासी समाज की अलग पहचान। और अंत में मुख्य समाचार, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, सरकार ने अधिकांश मांगे मानी, जेएसएससी परीक्षाओं पर कोर्ट के आदेश पर फैसला संभव। राज्य के जिला कोषागारों से अवैध निकासी के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का लिया निर्णय। अब बैंक खाता और पैन सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। राजकीय श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में सुबह 8 बजे से 70,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ज भी। और प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत शुक्रा भगत और साथियों के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुकरा भगत और साथियों के स्वर में उड़ाव लोकगीत। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के साथ आज होंगी अंजू रानी देवगम।

नमस्कार, सुप्रभात। आज की विविधा में मैं हूं आपके साथ अंजु रानी। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। प्रतिवर्ष आज के दिन 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों या जैव ईंधन के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इतिहास में जाएं तो डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल ने 10 अगस्त 1893 को पहली बार पीनट ऑयल यानी मूंगफली तेल से मैकेनिकल इंजन को सफलतापूर्वक दौड़ाया था। इसी दिन की स्मृति में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैसा कभी हमने बातें की कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाने का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बायोफ्यूल यानी कि फसलों से निकला ईंधन या कूड़े कचरे से निकला ईंधन। इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। भारत सरकार एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल लक्ष्य यानी कि संपीड़ित बायोगैस और सतत विमानन ईंधन पर विशेष जोर दे रही है, जो स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है। तो हमने जानकारी ली विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर ज...

0: सेना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: वस्तु और सेवा कर जिसे हम GST कहते हैं, एक राष्ट्र एक कर का सिद्धांत अब वास्तविकता बन गया है, जिससे भारत को एकीकृत कर प्रणाली की ओर अग्रसर होने में सहायता मिल रही है। इसके अंतर्गत तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से देश में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ आर्थिक विकास हो रहा है। GST ने अलग अलग बिखरे हुए केंद्रीय और राज्य करों की जगह कराधान का एकीकृत ढांचा प्रस्तुत करने करके भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया है। इसे एक

साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने और एक राष्ट्र एक कर के दृष्टिकोण का समर्थन करने में सहायता मिली है। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू करदाताओं MSMI किसानों, कारीगरों, निर्यातकों और विभिन्न व्यापार क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है। इस जानकारी के बाद चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते एक भेंटवार्ता

0: विशेष कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पद्मिनी कुंकल जी को, जो महिला कॉलेज चाईवासा की पूर्व बड़ा बाबू रही हैं। इसके पहले वे 35 वर्षों तक लाइब्रेरियन भी रही। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, नमस्कार। 35 वर्षों से मैम आप किताबों के बीच रही, पहले और आज में आप कितना बदलाव पाती हैं आप?
1: मैं पद्मिनी कुंकल महिला कॉलेज की सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ
0: जी।
1: मैंने लगभग 30-35 वर्षों से पुस्तकालय के पद पर काम किया है, तो मैं इसी, चूंकि मैं इसी महाविद्यालय की छात्रा भी रही हूँ
0: जी,
1: इन वर्षों के दरमियान जो पहले और आज के बीच जो उतार चढ़ाव हैं
0: जी जी,
1: उनको मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। पहले आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ छात्राओं की संख्या बहुत कम थी, और पुस्तकालय अध्यक्ष होने के कारण मैं ये जानती हूँ कि उस समय पुस्तकों की संख्या बहुत कम थी, यानी कि शिक्षा के जो साधन थे वो बहुत कम थे। लेकिन आज उसकी विपरीत स्थिति है, आज छात्राओं की संख्या बढ़कर के लगभग 4000 से भी ज्यादा हो गई है।
0: अच्छा।
1: और किताबों की संख्या भी उसके हिसाब से ही बढ़ गई है, सभी विषयों के विषयवार किताबें हैं। लेकिन उसके अलावे भी आज के शिक्षण जो स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें लाइब्रेरी में विषयों की पुस्तकों के अलावे जितने भी कंपटीशन के की पुस्तकें हैं, आईएएस से लेकर क्लर्क पद के जितने भी
0: हर क्षेत्र के
1: जितने भी प्रतियोगी पुस्तकें हैं वो हमारे लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और अभी आज के युग में इंटरनेट से, और ये चूंकि कंप्राइज्ड है इसलिए सभी छात्राएं पहले की अपेक्षा सुविधापूर्वक अपने शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, और बहुत अधिक छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं।
0: जो छात्राएं खरीद नहीं सकती हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो लाइब्रेरी से लेकर भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं।
1: बहुत सारी सुविधाएं हैं, बैठने पढ़ने की भी सुविधा,
0: तो अगर हम परिभाषित करें तो साक्षरता और शिक्षा को कैसे आप परिभाषित करें?
1: तो साक्षरता का जो अर्थ है वो साक्षर से आया है, साक्षर मतलब अक्षरों से युक्त, साक्षर अक्षरों से युक्त, पढ़ने लिखने में सक्षम होना, और पढ़ने लिखने में जो सक्षम समझने का जो ज्ञान होता है उसे साक्षरता कहते हैं। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा साक्षरता उसकी वो आधार है, शिक्षा का आधार साक्षरता है। साक्षरता से बढ़कर आगे जो स्तर है वो शिक्षा की ओर जाता है।
0: हम कह सकते हैं कि ये शिक्षा का पहला सीढ़ी है।
1: पहला सीढ़ी। हमारे यहाँ जो भारत में साक्षरता की कमी क्यों है, साक्षरता की कमी है यहाँ हमारे देश में, विद्यालय की कमी है, गरीबी है, जागरूकता की कमी है। और साक्षर नहीं है तो उनको कहीं भी पढ़ने लिखने या दूसरों के साथ बात करने का जो सलीका होता है वो ठीक से नहीं आता है, और साक्षर होने से वो सारी चीजें वो सीख पाता है। और लोगों को समाचार, जो भी शैक्षणिक लिखित जानकारी पहुंचने और समझने की क्षमता साक्षर होने से प्राप्त होती है। और जो भी

0: जो साक्षर हैं वो किसी भी विषय को विश्लेषित करने में कर सक्षम होते हैं,
1: पढ़ सकते हैं, विश्लेषित
0: कर सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। और जो साक्षर होते हैं तो वो रोजगार में कहीं भी काम कर सकते हैं, उनको कमाई का जो जरिया है वो बढ़ जाता है,
1: क्योंकि वो जितना शिक्षित होंगे वो अच्छे पद पर जाएंगे, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा उनको, तो वो आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे।
0: और कोई भी जैसे साक्षर, अगर साक्षरता नहीं है, साक्षर नहीं है, तो सामाजिक या सामुदायिक जो गतिविधि बाहर रखा जाता है उसमें वो लोग भाग लेने नहीं सकते हैं। और किसी भी जो सूचना हमें मिलती है, सरकारी हो चाहे किसी भी प्रकार की,
1: किसी भी क्षेत्र हो जी,
0: उसको हासिल नहीं कर पाते हैं। और साक्षरता की कमी से क्या होता है, कानूनी जो सरकार एवं कानूनी जो प्रणाली सब होती है उसको वो लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई भी संकट आने से कोर्ट में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है, कुछ सोचने समझने की शक्ति है नहीं, इसलिए उनको वहां तक जाने में भी डर महसूस होता है।
1: वो अपने अधिकारों को भी नहीं समझ पाते हैं।
0: और साक्षरता की कमी से सबसे पहले तो आर्थिक नुकसान उनको होता है, उनको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं देता है, कोई काम नहीं मिलता है, और अंधविश्वास की भावना होती है जिसके कारण
1: कई तरह का अंधविश्वास
0: है, वो उस चीज मतलब वो समझ नहीं पाता है, कुछ भी नहीं जानने के लिए उन्हें अपने आप में हीनता की भावना आ जाती है,
1: क्योंकि बौद्धिक रूप से वो सक्षम नहीं होते हैं, तो ये सारी बातें उन्हें समझ नहीं आती, नहीं सोच पाते हैं।
0: लोकतंत्र में भाग लेने के लिए भी वो लोग असमर्थ होते हैं शिक्षा की कमी के कारण, समाचारों, राजनीतिक सूचनाओं, समझने और पढ़ने की कमी के कारण मतदान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से साक्षरता की कमी से बहुत तरह के नुकसान होते हैं।
1: बिल्कुल मैम, कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान,
0: तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लागू किया गया था राजीव गांधी के समय में, जो आज 2009 से ये भारत कार्यक्रम साक्षर भारत कार्यक्रम वो 2009 से लागू है। पहले भी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए समय समय पर सरकार की ओर से योजनाएं लागू की गई थी, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हुआ, वयस्क शिक्षा हुआ। ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित हैं हमारे भारत में और साक्षर नहीं है। साक्षरता के विकास के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, और प्राथमिक शिक्षा के समान महिला शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सार्थक है। तो और चूंकि साक्षरता केवल सोचने समझने के लिए है, तो ये कोई नौकरी के लिए नहीं है, लेकिन विकास के लिए साक्षर होना
1: बहुत
0: जरूरी है। और 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई, जो लोग पढ़ लिख कर छोड़ दिए हैं उन लोग को फिर मैंने उन लोग को
1: पुनः शिक्षा देने के लिए।
0: महिला सामर्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति महिलाओं की शिक्षा में सुधार और उन्हें सशक्त हेतु
1: ये सारी योजना बनाई गई।
0: और अभी भी लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यूनिसेफ और भारत सरकार मिलकर के काम कर रही है, और हमारे झारखंड में झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन की बहुत बड़ी पहल है सरकार की ओर से, कि सभी 9 से 12 के सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बांटने का फैसला लिया है। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा और जो साक्षरता है, शिक्षा पढ़ने लिखने तक ही है, डिग्री उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा आपको उसके लिए डिग्री
1: का होना जरूरी
0: है, डिग्री जरूरी है, आपको नौकरी पाने का अधिकार है।
1: आप जितना शिक्षा प्राप्त कीजिएगा उतने अच्छे ओहदों पे आप पद पे जा सकते हैं।
0: व्यक्ति जो शिक्षित है, रोजगार योग्य, उच्च वेतन, नौकरी,

0: के योग्य होता है। ऐसे जो अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाता है और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है।
1: बिल्कुल।
0: और साक्षरता एक मानव अधिकार है, यह एक व्यक्तिगत साधन है जो मानव और सामाजिक विकास का भी प्रमुख उपकरण है बोलना चाहिए। साक्षरता गरीबी दूर करने, जनसंख्या वृद्धि रोकने, बाल मृत्यु में कमी लाने, लिंग समानता प्राप्त करने, विकास अंधविश्वास दूर करने, शांति लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साक्षरता का जो उद्देश्य है सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाना, जो समाज और राष्ट्र को पतन से मार्ग से रोके और विकास की मार्ग की ओर समाज को ले जाना।
1: जैसे आपने लड़कियों की बात की, महिलाओं की बात की मैम, तो कहते हैं ना कि घर में अगर एक लड़का या पुरुष साक्षर होता है तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है, और अगर एक लड़की या एक महिला जब साक्षर होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। को आपने काफ़ी विस्तृत रूप से सारी जानकारी दी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
0: अपनी ओर से ये सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी अपने आसपास में लोगों को शिक्षित करें,
1: बिल्कुल
0: अच्छी जानकारियाँ दें, और महिलाओं को खास करके और लड़कियों को आप स्कूल भेजें, उस शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। इसी से हमारा समाज
1: आगे बढ़ेगा।
0: यही मेरी सबसे कहना है।
1: बहुत सारी जानकारी दी मैम, समय दिया आपने हमारे कार्यक्रम को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। आपने सुना पद्मनी कुंकल जी को, जो बता रही थी, हमें जानकारी दे रही थी कि शिक्षा कितना ज़रूरी है, साक्षर होना, शिक्षा प्राप्त करना कितना ज़रूरी है, और ख़ास कर महिलाओं के लिए। तो हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे, अपनी बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को ज़रूर शिक्षित करें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सुनते हैं एक गीत।

गीत के साथ आज का हमारा विविधा का ये सफर यही समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजलि को दीजिए विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म थानेदार का गीत। समीर के लिखे बोल को संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर।
3: और इस विराम के बाद अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म ये वो आधा रहा। और इस गीत के गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, आशा भोसले। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं फिल्म कसम पैदा करने वाले की ये गीत सलमा आगा और बप्पी लहरी की आवाज़ों में, अनजान के बोल और संगीत बप्पी लहरी के थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: और अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत, अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तेजाब। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

टैक्सी ड्राइवर इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज, शाहिर के बोल, एस टी बर्मन के संगीत। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम रस रंजन यहीं पे समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओ, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
2: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
2: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
3: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
4: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
5: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
4: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
6: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
7: सुना तुमने?
8: क्या?
7: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
8: हैं?
7: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
8: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
7: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
8: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
4: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपते सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
9: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह। अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
10: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गईल बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
11: चाहिए कि जिसके बारे में जान सब
7: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
11: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है। सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है?
8: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
11: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
7: जी, हुजूर,
11: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
7: जी हुजूर।
11: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
6: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
11: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काट कर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
12: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
6: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
13: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
6: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
4: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
13: कुंवर सिंह
12: जिंदाबाद!
13: कुंवर सिंह
12: जिंदाबाद!
13: भारत माता की
12: जय!
13: भारत माता की
12: जय!
4: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
14: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
11: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसान मंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
1: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं?
0: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
2: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
0: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
3: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
4: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
5: Yes, sir.
3: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। नमस्कार। अगला कार्यक्रम आप कुछ ही पलों में सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची लेकर। आप सभी को अस्मिता और
1: विश्वजीत
0: का प्यार भरा नमस्कार जोहार।
1: अस्मिता आप कैसी हैं?
0: बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
1: बिल्कुल, सावन का महीना आते ही जैसे जैसे पूरा वातावरण ही बदल जाता है। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है और इसी के साथ शुरू हो जाता है भोलेनाथ की भक्ति।
0: हाँ बिल्कुल, और आज सावन का दूसरा सोमवार है तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। कोई हाथ में फूल लेकर पहुंच रहे हैं तो कोई बेलपत्र और जल लेकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और पूजा की थाली को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सजाकर मंदिरों की ओर जा रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा है।
1: मैं तो आज जा नहीं सका, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार की अगर बात करें ही तो बिल्कुल अलग है। पहले सोमवार की शुरुआत के बाद जैसे जैसे सावन आगे बढ़ता है वैसे वैसे शिव भक्ति की ये लहर और भी गहरी होती जाती है।

0: है। मंदिरों में सजावट दिखाई देने लगती है और पूजा की दुकानों पर रौनक बढ़ जाती है और बाजारों में भी सावन की रंग साफ नजर आने लगती है
1: और चारों तरफ भगवा रंग दिखाई देता है। कहीं भगवा कपड़े सजे हैं, कहीं भगवा झंडियां लगी हैं, तो कहीं पूजा की सामग्री के साथ शिव जी की सुंदर तस्वीरें और छोटी छोटी प्रतिमाएं दुकानों की शोभा बढ़ा रहे हैं।
0: तो आइए इस पावन सोमवार पर हम सब मिलकर भोलेनाथ का स्मरण करें और इस सावन की भक्ति में कुछ पल अपने मन को भी भिगो लें।

0: भोलेनाथ के भक्त आज पूरी तरह से अपनी भक्ति और श्रद्धा में लीन हैं, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार और इसी के साथ अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जोहार रांची में अक्सर हम लोग बात करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक सुविचार की, क्योंकि हाँ। सुविचार हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सुविचार को अपनाने से मुझे लगता है अश्मिता हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है।
1: बिल्कुल। तो आज का सुविचार है, जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती। जीवन कभी रास्ते कठिन लगते हैं, कभी मेहनत का परिणाम हमें देर से मिलता है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने सपनों के एक कदम और करीब जाने का। इसलिए बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़कर आज को पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जो रांची में कार्यक्रम में बात कर लेते हैं आज मौसम की, और अश्मिता मौसम के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए।
3: हाँ, हाँ,
2: कि राज्य में किस प्रकार से मौसम है। पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई नहीं बहुत ज्यादा, हमारे रांची में तो अक्सर होती रहती है, लेकिन बाकी के जिलों की अगर बात करें जहां पे बारिश हुई नहीं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम सभी के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि श्रावण माह है तो ऐसे में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, और ये सक्रियता जो कि 5 दिनों तक रह सकती है।
3: हाँ, और झारखंड में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय दिख रहा है, और उत्तर उड़ीसा और आसपास के झारखंड क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गया है। इसके प्रभाव से राज्य में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है।
2: बारिश का होना बहुत जरूरी है। अमूमन ये कहा जाता है कि बारिश के दिनों में जब आप खेतों की हरियाली को देखते हैं ना, अक्सर इस समय किसान जो कि खेत में हैं, और इस वर्ष की अगर बात करें, इस वर्ष ये अनुमान लगाया गया है कि बारिश जो कि थोड़ी सी कम हो सकती है, तो ऐसे में एक बार फिर से सक्रिय होना मानसून का, और वो भी जब हम खेत में अपना बिचड़ा दान दे रहे हैं उस समय, बहुत जरूरी है। पलामू में सबसे अधिक वर्षा हुई है।

रविवार की अगर बात करें, रविवार को झारखंड में सबसे अधिक करीब 44 मिलीमीटर बारिश पलामू में हुई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में जगन्नाथपुर में 27.5 मिलीमीटर और कांके में 22.5 मिलीमीटर, लोहरदगा में 19.2 मिलीमीटर, कोलेबीरा में 18.8 मिलीमीटर और साथ ही साथ 13 अगस्त को कोल्हान में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि वज्रपात और तेज हवा की भी चेतावनी दी है।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची। विश्वजीत, आज हम बात करेंगे धरती के उन शानदार जीवों में से एक की जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शेरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण की आवश्यकता को समझाना भी है।
3: बिल्कुल, शेर केवल एक ताकतवर वन्य जीव ही नहीं बल्कि हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लिए शेरों की बात करें तो हमारे लिए यह गर्व की बात है कि एशियाई शेरों का एकमात्र जंगली आवास भारत के गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के क्षेत्र में है।
2: और गिर के जंगलों में शेरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखा जा सकता है। यह क्षेत्र न केवल शेरों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत ही खास है।
3: विश्व शेर दिवस का जो महत्व है, शेरों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास जंगल और अन्य क्षेत्र में जहाँ पे शेर निवास करते हैं उसकी रक्षा करना और पारिस्थितिक तंत्र में शेरों का महत्वपूर्ण भूमिका को समझना,

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और हम सुन रहे हैं जोहार रांची कार्यक्रम। और निश्चित रूप से अश्मिता, अब बात कर लेते हैं आज के दिन के इतिहास की, क्योंकि इतिहास से हमें बेहद कुछ सीखने का मिलता है मौका, और जहां हमसे गलतियां हो जाती हैं उस पे सुधार करने का भी अवसर मिलता है। तो आज 10 अगस्त है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आइए एक एक करके जिक्र करते हैं।
1: हाँ, तो आपको बता दें कि 1999 में चेचनिया से इस्लामिक भूरा ने दागिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया था।
0: आज ही के दिन वर्ष 1793 में पेरिस में स्थित प्रसिद्ध लेवर संग्रहालय को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।
1: और 2001 में अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली को रूस का सतर्क समर्थन मिला था।
0: आज ही के दिन वर्ष 1942 में एक ऐतिहासिक घटना घटी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अगले ही दिन ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए महात्मा गांधी और अन्य शीर्ष कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
1: और 2004 में संयुक्त राष्ट्र और सूडान के बीच दारफूर कार्ययोजना पर हस्ताक्षर हुए थे।
0: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का मैंगलन अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। वर्ष था 1990।
1: और 2006 की बात करें तो तमिल विद्रोहियों पर फौजी कार्रवाई में श्रीलंका में 50 नागरिक मारे गए थे।
0: आज के दिन वर्ष 1519 में फर्नांडेज मैगलन ने दुनिया की पहली समुद्री यात्रा के लिए स्पेन के सीवेल से अपनी यात्रा शुरू की थी।

0: इसी खूबसूरत गाने के साथ जोहार रांची कार्यक्रम आज यहीं संपन्न होता है। अश्मिता, आज हमने बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हमारे श्रोताओं को सुनवाए, और वक्त की थोड़ी सी कमी है क्योंकि अगला कार्यक्रम आ चुका है। कार्यक्रम के अंत में मैं विश्वजीत
1: और अस्मिता,
0: हमारी ओर से जोहार,
1: नमस्कार। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है विश्व आदिवासी दिवस 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन एवं वाचन मनोज कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
1: नमस्कार।

ये गूंज है विश्व आदिवासी दिवस की, जो कि हर साल 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं, भाषाओं और अधिकारों के संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। भारत देश के विभिन्न राज्यों में जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम आदि राज्यों में इस दिन पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक रैलियों का आयोजन किया जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो हर एक जिला में यह दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव के रूप में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। रांची में इस दिवस को लेकर एक रैली भी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कलाकारों ने भाग लिया।

0: रांची के मोरहाबादी मैदान में विशेष रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर एक सांस्कृतिक मंच के साथ साथ करीबन 100 स्टॉल लगाए गए हैं एवं आदिवासी संस्कृति वाद्य यंत्रों की झलकियां भी सजाई गई हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और बहुत सारे कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ, उसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया।
1: आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए दीपक की ये दुआओं की बनी प्रकाश भरने की सदियों पुरानी आदि जीत का प्रतीक

0: झारखंड आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन।
1: आदिवासी दिवस है और पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने अपने तरीके से लोग आज इस दिन को यादगार बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने भी कुछ वर्षों से छोटा बड़ा और हर बार कुछ बेहतर करने का प्रयास इस दिन को करने का किया है। हम लोगों ने तो यहां पूरे मैदान में आज देश के अंदर राज्य के अंदर विभिन्न समुदायों में बटे हमारे आदिवासी समाज की झलकियां और पंडाल भी लगे हैं, जहां आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में आदिवासी समाज किस तरीके से अपने जीवन यापन में अब तक चला आ रहा है और कई जगहों पर एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं कलाकार के रूप में, यहां कारीगर के रूप में
2: आगे छोड़ दिए
1: और विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाज के लोग भी यहां आए हैं। आज ये आदिवासी दिवस के साथ साथ इस राज्य में कुछ गतिविधियां भी है, बहुत सारे लोगों को आज हमारे इस मंच से दिया हुआ वक्तव्य को भी बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, विशेषकर हमारे मीडिया कर्मी, और वो इसलिए है कि आज राज्य में आदिवासियों के साथ आदिवासी दिवस होने के साथ साथ राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है। और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है लेकिन हमारी मनसा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो।
0: राज्य के राज्यपाल ने भी आदिवासी दिवस पर संबोधित किए
3: से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उस ओर चिंता भी कर रहे हैं, उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। आप मिलकर बात करें और मिलने के बाद जो भी कोई समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत करेंगे और आपको इसके बाद भी कोई ऐसी बात लगती है जिसकी जो आवश्यकता है तो आप कभी भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर या आपको लगता है तो हमसे भी मिलकर इस दिशा का समाधान करवा सकते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिले ये हमारी इच्छा और रुचि है और हमारा राज्य बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में काम करें हम इस विचार के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी हमको मिलेंगे हर समय हम आपका समर्थन और सहयोग करने का काम करेंगे। अंत में मैं झारखंड सरकार तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है ये महोत्सव जनजातीय अस्मिता सांस्कृतिक विरासत सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए हम सभी मिलकर ऐसा झारखंड बनाए जहाँ विकास की गति तेज हो और हमारे सांस्कृतिक जड़ों को और भी गहरा हम लोग करें। आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जय हिंद जय झारखंड।
0: इस महोत्सव में बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जहां जनजातीय भाषाओं का काव्य गोष्ठी भी किया गया जहां पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव।
2: तो ऐसे देखिए सबसे पहले आप लोगों को यह जानना चाहिए कि भाषा कोई भी भाषा वो तभी जीवित रह सकती है या भाषा का विकास हो सकता है जब सरकार उसको संरक्षण दे और भाषा जो है वो बाजार की भाषा बन सके। बाजार की भाषा होगी तभी वो जीवित रह सकती है तभी वो राष्ट्र की भाषा हो सकती है या देश की भाषा हो सकती है या विश्व की भाषा हो सकती है। तो एक तरह से बाजार की भाषा अभी तक हम लोगों की भाषा नहीं

इस कार्यक्रम में राज्य के कलाकारों के साथ साथ दूसरे राज्यों से कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कलाकार शामिल थे।

राज्य के कलाकारों में मुकुंद नायक, मोनिका मुंडू और पाइका नृत्य, झूमर, छौ नृत्य, कर्मा नृत्य शामिल थे। शाम के समय एक ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया और अंत में झारखंड के कलाकारों ने बेहतरीन समा बांधा।

0: तो ये था विश्व आदिवासी दिवस 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन व वाचन मनोज कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। नमस्कार, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे विश्व आदिवासी दिवस 2026 पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन व वाचन मनोज कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से, अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सैयद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्लाह नूरजहां। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, धुन बनाई है अनु मलिक ने, और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं दंत रेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लछनपुर से विश्वनाथ साहू। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, श्रावण आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चलते चलते फिल्म से। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं, धुन बनाई है जतिन ललित ने। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक।

अब आइए सुनते हैं रिफ्यूजी फिल्म में से ये खूबसूरत सा गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर की है, धुन बनाई है अनु मलिक ने, आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज ये कार्यक्रम हम सुनेंगे नागपुरी में।

0: कार्यक्रम सुनोइया सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन बटले जोहार आसरा करीला हमरे कर सब सुनुए बहन मनक हाल खबर नगदे नगद होवी संघे वंदा बहन राउड को हो जोहार
1: जोहार सुमंदी और संघे सब कार्यक्रम सुनवैया बहन मन के वन्ना राय बटले जोहार और आसरा करीला कि सब बहन मन बढ़िया से हो बैं कुशल मंगल से हो बैं। और देखो नी आज तो सावन कर दोसर सोमवारी है और आज बहुत बहन मन सोमवार कर व्रत और बाबा भोलेनाथ कर पूजा अर्चना में लागलो है कहो सुमन
0: बहन। हाँ एकदम सही कहली वंदा बहन। और देखो कि सावन कर महीना जे लगातार होवत झमाझम बारिश चारों बटे फैलल एक मनमोहक हरियाली है और संगे है काला काला बदरी और घटा और भींजल माटी कर सोंधा सुगंध कर संगे है प्रकृति कर जे सौंदर्य छटा अपन चरम में पहुंच जायला और प्रकृति पूरा तरी से इबेराई सावन कर महीना में निखर उठेला।
1: एकदम सही कहली सुमन बहन। और देखो नी धरती उपरे जखन बारिश कर बूंद पड़ेला तो गच वृक्ष और घास जैसे कि नावा जीवन भेटाए जाए उमन के और से नियर खिल उठेला और जीवन में उल्लास आनंद समाय जायला। पशु पक्षी कर संगे संगे मनुष्य कर मन भी इस सौंदर्य के देख के एकदम आनंदित हो जायला। चारों बटे फैलल हरियाली प्रकृति कर सुंदरता में चार चांद लगाए देवे ना।
0: एकदम सही कहा थी वंदा बहन। सावन कर महीना में जब प्रकृति अपन हरियाली से भरल सरोवर और हवा कर झोंका से नाचत इठलात जे उकर टहनी मन है पतई मन है और पेड़ पौधा मने उफनत नदी और बादल कर अटखेली प्रकृति कर तान के छिड़के पशु पक्षी मानो सब के झूमे के लिए उकसाए देवेला कहू की। और आसमान में होवत जे मेघ कर गर्जन है बद्री गड़के खके सुन के बुझायला की कोई जलत चिमनी बायर बायर चौकाए देते और ई मौसम में जे घर आंगन है सब कुछ बहुत सुहावना लागे लागेला है नहीं।
1: बहुत बढ़िया कहली। और देखो नी सावन कर महीना चारों बटे हरियाली कर सुंदर दृश्य में प्रकृति बटले मिलल हरियर परिधान में मानो कि हमरे कर वसुधा भी लिपटल है।
0: सही कहा
1: इसन प्रतीत होवेला जैसे कि सावन एगो पावन मास कर रूप में देखल जाते अनगिनत व्रत त्योहार पूजा अर्चना ई मास कर विशेषता लागेला और वातावरण बरखा कर जल से निर्मल और स्वच्छ हो जायला। और देखो नी बारहों महीना में सावन कर महीना कर सबसे खास महत्व होवेला।
0: सही कहा थी। देखो कि सावन कर महीना में जो है ना शिव भक्ति और देवी गौरा माँ पार्वती जी कर पूजा सब करे ना और इ महीना में जे इंद्रदेव भी हैं से प्रसन्न रहे ना संगे हैं रति कामदेव जन मानस कर हृदय में प्रेम कर अंकुर के अगर प्रकृति से जोड़ के देखू हमरे तो सावन में जे जिंदगी कर श्रृंगार मिलेला इ महीना में प्रकृति अपन प्राकृतिक संपदा उढ़ेल के और हमरे के भी ऊर्जा प्रदान करेला है नहीं। और चारों बटे जे बिखरल इंद्रधनुषी छटा हवा कर सोर इठलात नदी कलकल करत झरना कर आवाज सब हमरे कर मन मस्तिष्क के दिमाग के एकदम शांति प्रदान करेला है नहीं।
1: और एह तरी सावन कर महीना में हमरे कर सब बहन मन भी हरियाली तीज के मनायला। झूला झूले एक हरियर साड़ी पिंधे बिंदी चूड़ी और हाथ में मेहंदी लगाए के अपने के सजाए ना और प्रकृति कर समीप महसूस करे ना। प्रकृति कर रंग में ढेल के इले सावन के मन भावन भी कहल जायला। और ई मौसम में हल्का हल्का बारिश तीज त्योहार और लोकगीत के उमने गावे ना।
0: सही कहली। जब हरा परिधान में हमरे बहन मन लिपटल देखी ला अपन आप के या आसपास जब भी जेके भी देखू हरियर पिंधल ते एक अलग तरह कर मन में जे खुशी है वो उत्पन्न हो जाएला है नहीं। और एकदम हरियर ही छाए जाएला कहूँ तो एक तरह के है नहीं वंदा बहन।
1: तो सावन कर महीना तो हरियर है ये है।
0: सही कह
1: गच वृक्ष प्रकृति तो हरियर दिशे लगा
0: जे बटे देखो एकदम पतई में एक अलग जान प्राण सब पेड़ पौधा मन में आ जाएला। और जीवन कर श्रृंगार है सावन और सावन कर महीना जो है से पूरा सृष्टि श्रृंगार करेला और पूरा वातावरण जो है एगो अद्भुत सौंदर्य से भरल रहेला। यह हरियाली सब जीव के जीवन देवेला और यह हरियाली जो है प्राकृतिक वातावरण के जिंदगी कर श्रृंगार भी बनाए देवेला है नी वंदा बहन। और देखो कि प्राकृतिक कर सुंदरता शाश्वत है धरती कर कविता भी जे कभी भी नष्ट नहीं होवेला और सुंदर वस्तु सदा आनंद देवेला हमरे के। प्रकृति हमेशा आत्मा कर रंग के धारण करेला। प्रकृति कर बिना इस धरती पर कोई भी जीव कर जीवन संभव ना लागे और प्रकृति सब जीव कर बीच एगो संतुलन बनाए के राखेला जेकर से हमरे का जीवन चलेला
1: है नहीं। सही कहली सुमन बहन कि प्रकृति से हमरे कर जिंदगी जुड़ल है सबकर जिंदगी जुड़ल है
0: और एक संतुलन है
1: और एगो संतुलन भी ओकरे चलते बनल है।
0: सही।
1: तो ई प्रकृति कर जखन बात होलक तो चलो एकरे से जुड़ल एगो गीत सुनीला हमरे मन दीना सिंह और संगीमन कर गावल
0: लय सुनू तब।

0: तो सुनवैया बहिन मन, एखन हमरे मन सुनत रहे नागपुरी लोकगीत दीना सिंह और संगी मनकर गावल।
1: बिल्कुल। और वंदा बहिन, चलू अब हमरे आई जानब नागपुरी में नागपुरी साहित्य कर अंतर्गत नागपुरी लोक नृत्य कर समृद्ध परंपरा रही है। कहा लखे तो नागपुरी समाज में देखो कि नृत्य के खेल और खेलक भी कहल जाएला, जैसे अखरा खेलक, डमकच खेलक। नृत्य में जैसे कि मौसम भेला परब है और अवसर विशेष कर ऊपरे भी निर्भर करेला। और नृत्य कर जे नावा भी,
0: नाव भी है,
1: तरह तरह का जे नाव है कर उकर अनुरूप रखल जाएला। जैसे कि फगुआ का नृत्य भेला, मंडा नाच है, वह तरी भक्तिया नाच हके, सोहराई नृत्य है, और इसने मैठकड़न लगिन होवेला, जे कि शादी ब्याह बेरा कर तले पानी काटे कर भी जिन नृत्य है ई मन भी होवेला। तो देखो कि हमरे कर जो नृत्य है सब कई एक ठो नाव दिवल जाए है एक नागपुरी साहित्य में, और सबके अलग अलग अवसर में और बेरा में करल जाए नृत्य के।
0: और देखो नी, खाली नृत्य नहीं, उकर संगे गीत और वाद्य भी होवे बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी
0: है वाद्य, यानी कि बजना, जैसे कि होलक सहनाई, बांसुरी, मुरली, मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, भेर आदि जे बजना मन है उमने सुर और ताल कर संगे नृत्य उकर में करल जाएला। और देखो नी, झारखंड कर कुछ नृत्य मन ऐसा है जे की खाली पुरुष मन कर है ना, जैसे की छौ नाच होलक, नटुआ नाच होलक, पैका नाच होलक, मंडा नाच होलक, या मर्दाइनी झूमर, फगुआ और घोड़ा नाच मन। और उसने है कुछ नाच मन है जे महिला मने करे ना, जैसे कि कली, नचनी, खेलड़ी नाच, जनानी झूमर, अंगनई, डमकच, माटी कोड़न और पानी काटे को मन।
1: सही कहली। तो देखो कि जे छुआ मन खेल है और नृत्य भी होवेला, और कोनो कोनो नृत्य तो महिला और पुरुष मिल के करे ना, है नी। जैसे कि ठढ़िया हके और गोल बारी भेलक, लहसुआ भी एगो नृत्य भेलक, जे कि दुयो जन मिल के करे ना, इकर में पुरुष और महिला दुयो मन मिल के करे ना। और इसने एगो लुझरी मन भी हके, ये भी एगो नाच कर प्रकृति है। तो कोनो नृत्य सरल होएला तो कोई जो है से जटिल भी होवेला। और सरल नृत्य में जनानी झूमर और क्लिष्ट में मर्दानी झूमर है। और छौ और पैका और जो नचुआ है से नृत्य सभे एगो शिष्ट में चलेला, है ना। तो इकर कारण है कि सामूहिक नृत्य और गोटा परिवार, गांव, समाज उकर में शामिल हुआ है ना, और जेकर चलते कोनवे अभद्र नृत्य में दिखेले नहीं मिलेला। सब में एक ठो शिष्टाचार रहेला,
0: भद्रता रहेला,
1: भद्रता रहेला, एकदम सभ्य तरीका से इके करल जाएला।
0: और देखो निहिया कर जे नृत्य मन है वो तो लोक नृत्य है ये है जे कि बहुत पारंपरिक रूप से सब कोई मिल के करे ना। और कोनवे नृत्य बहुत तेज गति कर होवेला और कोनो कोनो नृत्य बहुत धीमा या मध्यम गति कर भी होवेला।
1: सही कहली।
0: महिला मन जो है उन्हें आपस में एक दूसर के संगे जोड़ के कतार बांध के नृत्य करे ना, और उकर में बजना कर प्रयोग नहीं होवेला महिला नृत्य में।
1: बाजन
0: और कारण है कि झारखंडी जे वाद्य यंत्र होवेला, जैसे कि मांदर होलक, ढोलक होलक, वो मने बहुत मने बड़ और भारी होवेला, जैसे कि महिला मन उठाए नहीं पा रहे ना।
1: हाँ।
0: से चलते उमनक नृत्य में वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं करल जाएला।
1: और देखो कि जे सभी नृत्य है और जे पुरुष जेकर में वादक है और नाच कर संगे वाद्य यंत्र कर भी प्रयोग करे ना, वो मन के देखब कि गला में मांदर के टैंक के।
0: हाँ।
1: और कहले कि उकर तो भारी ये है नी, तो उके उमन टैंक के करके ही और फिर नृत्य

0: भी शामिल हो ना, तो वाद्य यंत्र कर प्रयोग भी करें ना, और गायक मन भी स्वतंत्र रूप से गीत संगे नाचे ना। और कुछ एक जिन नृत्य में विशेष पोशाक और साज श्रृंगार कर दरकार होवेला, और इकर में मुखड़ा भी पिंध है ना, तो कोनो कोनो जगह में बिना मुखड़ा कर भी छौ नाच होवेला। झारखंड कर जे अधिकतर जिन नृत्य है ओकर में भक्ति है, श्रृंगार और करुण है, और वीर है, शांत रस कर रहेला, तो कोनो कोनो युद्ध शिकार और कृषि और जीवन से जुड़ल नृत्य रहेला कोई कोई, है नहीं?
1: बहिन। और देखो निहिया कर जे आदिम लोक नृत्य है से प्राचीनता, कला प्रियता, रसिकता और सुंदर बोध के अभिव्यक्त करेला, जे कि हमरे के अपन पुरखा मन से उपहार के रूप में मिल है। ये जो झारखंडी आदिम नृत्य है से झारखंड कर अस्मिता कर गौरव हके और झारखंड कर पहचान और शान दियो है। तो चलो आज हमरे मन जानब कुछ विशेष नृत्य कला कर बारे में जे कि सदान समाज से जुड़ल है, लेकिन उकर से पहले चलो सुनीला एगो नागपुरी लोकगीत जे कि जानकी देवी और संगीमन कर गावल गीत है, और गीत है मर्दानी झूमर में।
0: एकदम

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
7: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
8: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
7: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: ये रहे विज्ञापन संदेश। अरुकर से पहले हमरे मन सुन ले मर्दानी झुमर लोकगीत, जानकी देवी और संगी बनकर गावल। तब सुमन बहन गीत कैसा लगल से बोल।
10: गीत बहुत बढ़िया रहे। आज हमरे एक नृत्य कर बात करत थी और नृत्य कर गीत भी रहे तो बड़ा बढ़िया रहे। और बोलो कि मन के झूमे कर लायक रहे, है नी? तो चलो अब आज जे हमरे जाना थी कि विशेष नृत्य कर विषय में। तो सदान समाज से जुड़ल है और हमरे कर नृत्य कई एक तरह कर होवेला। तो इकरे में एगो है पैका नृत्य। तो कोनवे जब विशेष अवसर होवेला, उत्सव चाहे समारोह और चाहे तो बराती मन कर जब हमरे स्वागत करी ला वंदा बहिन, तो इ नृत्य के सम्मोहक रूप से प्रस्तुत करल जाएला। सबसे आकर्षक और तेजक भी होवेला, संगे संगे बहुत ओजस्वी भी रहेला है और मनोरंजन और वीरता से भरल इन नृत्य है। और पुरुष प्रधान नृत्य होवे के चलते इकर में 5, 7 या 9 गो जे जोड़ा हुए से बनाल जाएला। और नर्तक मन रंगी चंगी और झिलमिलात जैगो कलगी रहेला और मोर कर पंख भी लागल रहेला और पंगड़ी जे पगड़ी कहिला हमरे से के बांध है ना। और गला में सुंदर रंग बिरंगा हार और गहना चमकीला जे आभूषण मन है से मन के पिंध है ना ही मन है नी।
9: और देखो नी, रंगीन साड़ी कर धोती हुएला, कमर में रंगीन गमछा भी बांधल जाएला और गोड़ में घुंघरू, कंधा में झूलत चावर और बायां हाथ में चमकत ढाल और दायां हाथ में चमकत दुधारी तलवार रहेला।
10: सही। और इकरे में गिन देखो कि हमरे कर जे नगाड़ा है, ढाक ढोल है, सहनाई और नरसिंघा और भेर जितना भी तरह कर वाद्य यंत्र मन है, बजाय कर जे यंत्र है, उके तेज आवाज में ऐसा महसूस होवेला जैसे कि युद्ध भूमि में बम कर बरसात होत है। और वीर सैनिक वीरता से भरल नृत्य करत है। और सदान आदिवासी मनक इ मुख्य जे नृत्य हके जेके युद्ध नृत्य भी कहना और कन्या हरण विवाह भी कहना।

0: फोन करवा दे हमरे मन जाना कि फगुआ नृत्य के बारे में। ये फागुन और चैत कर सांझ बेरा का नृत्य होवेला। इकर में बसंत उत्सव या होरी कर संगे नृत्य के करल जाएला और प्रकृति कल उल्लास कर संगे रंग में रंग मिला के नृत्य के करल जाएला। नृत्य में मुख्य रूप से वाद्य यंत्र कर प्रयोग होवेला, जैसे कि सहनाई होलक, बांसुरी, मुरली, ढोल, नगाड़ा, ढाक कर और मांदर कर प्रयोग इकर में विशेष तौर पर होवेला। और पुरुष प्रधान नृत्य ई होवेला जेकर में सभी राग गीत कर संगे इके करल जाएला।
1: और देखो कि पचरंगी फगुआ नृत्य कर ही एगो कड़ी हके और कड़ी ऊपरे जे राग बदल जाएला, लेकिन इकर कड़ी में और इकर में और फगुआ पुछारी नृत्य में आमने सामने दू गो दल बनेला और एगो दल गायक वाला और जे दोसर दल लागेला वो जे होवेला वो गावे कर रहेला। और मांझे कली और वादक अपन नृत्य कला से सबसे मोहित कर लेवाना। दुयो दल कर जे मायने गीत कर संगे है प्रश्न और उत्तर भी होवेला। ई बेरा गीत कर प्रश्न और उत्तर सुनेक बेरा वाद्य जे है से अटक जाएला और दोबारा गीत कर जब पुनरावृत्ति कराए ना तब गायन और वादन और नृत्य तीनों के शुरू करल जाएला।
0: एकदम सही कहली। और झारखंड कर बहुते प्रसिद्ध एगो नागपुरी लोक नृत्य है डमकच। और इके विशेष तौर पर बियाह और दोसर बढ़िया अवसर मन में करल जाएला।
1: सही कहल।
0: और ये झारखंड कर जे सदानी संस्कृति है ओकर एगो बहुते महत्वपूर्ण हिस्सा हके। बियाह में दूल्हा और दुल्हन दुयो बटकर आदमी मने मिल के नृत्य के करे ना, हमरे मन तो देखबे करे थी सब बियाह में।
1: और बियाह में गिन अगर इन नृत्य ना रहे तो कहू की मड़वा, हाँ मड़वा है घी ढरी है, मने मड़वा एकदम सुनसान लागे ला कहू की। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन नृत्य कर बिना हमरे कर जे नागपुरिया समाज कर जे अथी है ये एकदम अधूरा है। कोई भी जे भी हमारे
0: पारंपरिक उत्सव कोनो कार्यक्रम में ये नृत्य जरूर
1: जरूर होवेला। झूमर और डमकच कर बिना कोई भी हमरे कर उत्सव पूर्ण नहीं होवेला।
0: सही कहले सुमन जी। और देखो नी महिला और पुरुष दियो एगो कतार में और या आधा गोलाई बनाए के एक दूसर कर कमर या हाथ के धर के नृत्य के करे ना। गीत हंसी ठट्ठा दुलार और परिवार कर संगे आनंद से एकदम भरल होवेला। मांदर ढोल नगाड़ा सहनाई जैसन पारंपरिक वाद्य यंत्र कर धुन में नृत्य के करल जाएला और इतने सुंदर लगेला।

0: जैसे गोलाई और अर्धगोलाई बनाए के नृत्य करेना है नी, और नृत्य कर गति मधुर आकर्षक लयपूर्ण होवेला। मांदर ढोल नगाड़ा बांसुरी सहनाई और करताल जैसन पारंपरिक वाद्य यंत्र कर उपयोग करेना, और गीत मन के प्राकृतिक प्रेम कृषि लोक जीवन और सामाजिक संबंध कर सुंदर चित्रण मिलेला इकर में हमरे
1: एकदम सही कहली। और देखो नहीं और भी नृत्य मन है जैसे कि नृत्य होलक सोहराय नृत्य होलक और घोड़ा नृत्य होलक। तो सोहराय नृत्य जो है झारखंड पर एगो प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य रह के सोहराय पर्व में करल जाएला जे की फसल काटे के बेरा और पशुधन कर सम्मान में इ पर्व के मनाल जाएला।
0: यह तरी हम
1: घोड़ा नृत्य जो होलक से झारखंड कर एगो बहुत आकर्षक लोक नृत्य है जेकर में कलाकार नकली घोड़ा कर पोशाक के पिंध के नृत्य करे ना। मेला होलक चाहे बिया सांस्कृतिक कार्यक्रम में इके प्रस्तुत करल जाएला और नचैया घोड़ा कर चाल कर नकल करेला। ढोल मांदर नगाड़ा और सहनाई कर धुन ऊपरे नृत्य करल जाएला।
0: बिल्कुल
1: तो ई होलक हमरा कर झारखंड कर प्रमुख नृत्य मन जे की सब पर्व त्योहार बिया अवसर में हमरे मन
0: समृद्ध परंपरा रही है नृत्य कर हमरे कर झारखंड में।
1: तो सुमन बहन अब तो हमरे कर जाय कर बेरा होते, तो अगला सोमवार के हमरे मन बहन मन कर संगे फिर से गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा
0: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आज ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे नागपुरी भाषा में। सूत्रधार थी वंदना राय और सुमन तिवारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से ये खूबसूरत संगीत। आवाजें हैं विनोद सिंह और हर्षदीप कौर की। इशरात कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का अगला गीत अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में अमिता भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम है टू स्टेट।

अगला गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने। फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, डंकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है प्रीतम ने,

0: इसी प्यारे किस्से गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. When the lower house reassembled after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Tribunals Reforms Bill 2026 amid the opposition uproar. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy introduced the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Kerala Alteration of Name Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol introduced the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. After that, the presiding officer Sandhya Ray urged the opposition members to go back to their seats and allow the House to function. The opposition members were on their feet demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over the issue of alleged police action during student protests over the NEET issue. As the pandemonium continued, the presiding officer adjourned the House till 2 p.m. The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, Tiranga rallies were organized in various districts of the state, including Bid, Thane and Buldhana. In Manipur, Chief Minister Yumnam Khemchand participated in the campaign from his residence. He urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. In Nagaland, the BJP organized a two-wheeler rally, Har Ghar Tiranga, in Kohima today. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikasit Bharat. In Jharkhand, students have started a march from Jaipal Singh Munda Stadium towards the Jharkhand Legislative Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. The Jharkhand Public Service Commission, JPSC, and Jharkhand Staff Selection Commission, JSSC, Reforms Munch-led student agitation entered its 17th day today. The protesters are demanding cancellation of certain examinations, particularly the JSSC, CGL and a CBI probe into the alleged irregularities. The government has claimed that 98% of their demands have been accepted. Meanwhile, BJP leaders, including Leader of Opposition Babulal Marandi and State President Aditya Sahu, were detained while protesting outside Chief Minister Hemant Soren's residence. The gross merchandise value of the government e-marketplace GeM has increased from 422 crore rupees to over 1,55,000 crore rupees in the last decade. In a social media post,

0: Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said GeM is emerging as a key driver of self-reliance that is also strengthening the foundation of a Viksit Bharat. On the occasion of World Lion Day, Prime Minister Narendra Modi has said India's Asiatic lion population is thriving, with its habitat and range expanding. Sharing an article written by Union Minister Bhupendra Yadav, Mr. Modi highlighted that the government's unwavering commitment to conservation, backed by strong community participation, is an inspiring example of protecting the country's wildlife and preserving the species for generations to come. Thousands of Kashmiri diaspora members staged a protest march in Bologna, Italy. They condemned the killings of innocent civilians by Pakistani forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The protest came amid growing demonstrations by Kashmiri diaspora groups across the world. The Jammu-Kashmir Human Rights Observatory has recorded 93 civilian deaths during the escalating protest in POJK over the last month. Chinese authorities have evacuated more than 1 million people from eastern China, including Shanghai, as Typhoon Dolphin made landfall. The typhoon brought heavy rain and disrupted transport across the region. Nearly 1,000 flights were cancelled in Shanghai today. Authorities have downgraded Dolphin to a tropical storm. China had earlier issued its highest level red alert for Dolphin, which is the strongest storm to hit the country this year. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and West Madhya Pradesh today. And with that, we end this news bulletin.
1: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा. पहले मुख्य समाचार. जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव जारी. मामले की सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े. झामुमो ने भाजपा पर छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव को बढ़ावा देने का लगाया आरोप. भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की पहल की. श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा परिचालन. और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की जताई संभावना. कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट. और अब समाचार विस्तार से. जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है. आंदोलनकारी छात्र मार्च करते हुए विधानसभा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं. भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी मार्च में शामिल हुए हैं. इधर रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि छात्रों ने शांतिपूर्वक मार्च करने का पुलिस को भरोसा दिया है. वहीं एसडीएम सौरभ कुमार ने कहा कि प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों के शामिल होने की संभावना है, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है.
2: सभी व्यवस्था ठीक ठाक से है. बच्चों ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोगों का मार्च रहेगा. मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट बच्चों का हम लोग निकाल देंगे. या
3: आज जो है ये इनका जो कंडक्ट है वो पीसफुल रहेगा. उनके द्वारा भी अश्योर किया गया है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा. और स्टूडेंट्स ने ही बोला है कि अगर कोई पीसफुल नहीं है तो वो हमारे प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है.
1: गौरतलब है कि सरकार के साथ तीन दौर की वार्ता के बाद भी मांगों पर पूरी सहमति नहीं बन पाई. सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्र परीक्षा में कथित धांधली पर सीबीआई जांच की मांग और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित अनियमितता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में जवाब की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. घेराव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, सीपी सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे. झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने आरोप लगाया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में छात्रों ने विधानसभा मार्च निकालने का फैसला किया, जबकि सरकार 98% मांगों को मान ली है। वहीं कोर्ट के ऑर्डर के बिना जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करना सरकार के पावर में नहीं है।
4: प्रतिनिधि मंडल के साथ छात्रों की बैठक हुई, वहां खड़े होकर उन्होंने मीडिया में कहा कि 98% मांगे मान ली गई है। छात्रों ने भी इसे स्वीकार किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में वो जाकर आपस में बैठे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो उन्हें पीछे से धकेल रही है कि नहीं तुम आंदोलन बंद मत करो, शायद उन्हीं के कहने पर आज विरोध मार्च हो रहा है, हमें ऐसा लगता है।
1: वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में विधानसभा घेराव के पीछे भाजपा का हाथ होने के आरोपों को निराधार बताया है। संसद परिसर में आज उन्होंने कहा कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था तो हमने कभी नहीं कहा कि इसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी है।
5: कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा। हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। आपने परिवार रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। उन्होंने छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की जानकारी एक्स पर दी। इसके तहत छात्र परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी अपनी परेशानी और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी महोत्सव के तहत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कल अमर शहीद चांद भैरव मुर्मू मंडप में आदिवासी जीवन और संस्कृति पर आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में कई शॉर्ट फिल्में दिखाई गईं। महोत्सव में युवाओं के लिए फिल्म निर्माण पर विशेष मास्टर क्लास आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
7: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
6: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
1: सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर में 3 लाख से अधिक लोगों के जलाभिषेक करने का अनुमान है। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में पहली सोमवारी से अधिक कांवरियों का जुटान हुआ है। दुमका SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि भक्तों को सुगमता पूर्वक जलार्पण का अवसर सुलभ कराया जा रहा है।
8: आज सावन का दूसरी सोमवार है, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आने वाली है। ट्रेन सिटी में भी हम लोगों ने देखा और रोड में भी काफी लोग हैं, जोश और उत्साह के साथ है, तो उनको सही तरीके से जलार्पण हम लोग करा पाए इसलिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है।
1: श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों में जसीडीह वासुकीनाथ स्पेशल, वासुकीनाथ पटना स्पेशल, पटना जसीडीह स्पेशल,

और मधुपुर नरकटियागंज स्पेशल शामिल हैं। इन ट्रेनों से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। ये ट्रेनें 10 अगस्त 11 17 18 24 और 25 अगस्त को चलेंगी। पलामू जिले के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में फरार आरोपी रोशन तिवारी ने आज मेदिनीनगर शहर थाना परिवार के साथ सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2026 को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेडमा में विनीत तिवारी के घर के निकट से उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। वहीं रांची, धनबाद, गिरिडीह समेत 13 जिलों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव जारी। मामले की सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े। झामुमो ने भाजपा पर छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की पहल की। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा परिचालन। और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की जताई संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकारा है श्रीमती सिप्रा बोस।

अभी आप सुन रहे थे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकारा थी श्रीमती सिप्रा बोस।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुमार आनंद से चंद गजलें।

0: West Bay of Bengal around the 13th of this month. A cyclonic circulation is likely to form around tomorrow, bringing another spell of rainfall to the state. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appeals to opposition to allow Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to issues raised by members without any disruption. Four bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today, Prime Minister Narendra Modi says India's scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित

0: अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
1: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है?
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों JPSC सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन

0: आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साह पूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दो पहिया रैली का आयोजन किया। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
4: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू

भाजपा विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आर्यन से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का।

आइए अब सुनते हैं तेरे नाम फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रेडी से। आवाजें हैं तुलसी कुमार और केके की, संगीत से सजाया है प्रीतम ने

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। छात्रों ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच सहित प्रमुख मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ईडी ने कथित जेपीएससी परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में ईसीआईआर दर्ज किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: परीक्षा विवाद को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच आज हल्की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में 2 छात्र और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद राजधानी रांची के संवेदनशील इलाकों और विधानसभा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया है। श्री मरांडी ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया है।
3: एससीसी से लेकर के जेपीएससी सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच कर। हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके खेलगांव में पूरे झारखंड में हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार तानाशाही पर उतारू है और पुलिस के बल पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही में भारी राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। इस बीच सदन में मंत्री सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हैक कर लिया है। उन्होंने छात्रों से दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
4: हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की जय वंदे मातरम। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो यह हमारी आन बान शान है

रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के तहत आज विशेष फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल्लूई भाषा में बनी निर्देशक प्रिंसिपाल के फिल्म व्हाट आर यू सर्चिंग दिखाई जाएगी, जो आदिवासी समाज की सोच और पहचान को दर्शाती है। इसके साथ ही अशोक वेलु द्वारा निर्देशित भावनात्मक फिल्म लुक एट द स्काई का भी प्रदर्शन होगा, जो दर्शकों को प्रकृति से जुड़ाव का भावपूर्ण अनुभव कराती है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं कोडरमा के चंदवारा में हजारों शिव भक्तों ने गोरी नदी से जल भरकर 12 किलोमीटर की भव्य कांवर पदयात्रा निकाली और दोमुहानी धाम में जलाभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
0: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो, बहुत अच्छी कहानी थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की, कोई नाराजगी है तो माफ करें।
0: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
0: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम

0: बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। एआई के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
1: इसका उत्तर है, मावली नोंग गाँव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, किसानों, काश्तकारों, जनता ने

0: वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ फिमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज का पहला गीत हमने लिया है अजहर फिल्म से। मनोज यादव के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की।

अगला गीत आइए सुनते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से, जिसे गाया है पलक मुच्छल ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अभी आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत दिया था शांतनु मोइत्रा ने।

अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल को वीर फिल्म में धुन बनाई थी साजिद वाजिद ने। आइए अब सुनते हैं अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल के हैं, धुन बनाई है ए आर रहमान ने। फिल्म का नाम है रांझना।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म आकर्षण से ये खूबसूरत सा गीत। प्रशून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ रांची मेलोडीज अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर

मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा विवाद को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच आज हल्की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में दो छात्र और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपए से अधिक के पहले अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। इसमें सर्वाधिक राशि ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए दूर संचार समिति की बैठक की। उन्होंने पलाशगाछी और दुर्गाटोला जैसे नेटवर्क विहीन दियारा एवं पहाड़ी गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने और ग्रामीण आबादी को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश BSNL को दिया। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कार्यक्रम आओ साथ चले में आप सबका करती हूँ स्वागत। मैं हूँ कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा, आप सबको मेरा नमस्कार। श्रोताओं, झारखंड सरकार का राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने पर विशेष ध्यान है। इसके तहत राज्य सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण की नीति तैयार की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 1 करोड़ से लेकर न्यूनतम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस नीति के तहत नगद के साथ साथ नक्सलियों को जीवन यापन के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। न केवल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास बल्कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार द्वारा नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के इस पर विशेष ध्यान से नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं। श्रोताओं, समाज की मुख्य धारा से भटक चुके और अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मसमर्पण नीति का लाभ ले रहे एक भाई से आइए सुनवाती हूँ बातचीत। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम धनेश्वर यादव उर्फ कारगिल यादव, पिता भूखी यादव, ग्राम जीपुआ टोला बुचुआटार थाना बालूमाथ जिला लातेहार का निवासी हूँ।
0: धनेश्वर जी, जहाँ तक देखा जाता है कि झारखंड राज्य अभी भी नक्सल मुक्त नहीं हो पाया है और कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो अभी जंगलों में भटक रहे हैं और भटकने के लिए विवश हैं, चाहे वो वजह कारण जो भी हो उसकी वजह से वो जंगलों में हैं और काफ़ी यातनाएं और काफ़ी समस्याएं भी उनके साथ देखने को मिल रही हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में?
1: जब से यहाँ झारखंड सरकार आत्मसमर्पित नक्सली मतलब क्या कहते हैं सेंडर पॉलिसी निकाले हैं, तब से झारखंड के बहुत जिला से सेंडर पॉलिसी में आए हैं आदमी और नक्सल मिला जुला के समाप्ति की ओर ही है। जो आत्मसमर्पित जो मतलब सुविधा दी जा रही थी, जो बनाया गया है प्रावधान, वो तो मिल रही है लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। बच्चा का, दो बच्चा का सुविधा दी गई है 40,000 रुपया का बोलते हैं सालाना में, और जमीन देने के बाद था 4 डिसमिल, तो हमें तो जमीन अभी तक नहीं मिला है लेकिन जमीन के बदले में हमको 1500 रुपया रूम रेंट मिल रही है।
0: धनेश्वर जी, आपने मुख्य धारा में वापस आने का निर्णय कब लिया और कब आप वापस आए?
1: जी, मैं सरेंडर करने का प्लान 2018 में किया और 1 सितंबर 2018 को मैं रांची एसपी श्री अनिश जी गुप्ता और डीआईजी श्री होमकर के सामने मैंने आत्मसमर्पण किया।
0: एक बात हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि मुख्य धारा से भटकाओ आखिर क्यों, किस वजह से आप में आया, क्यों आप परिवार को छोड़कर चले गए और गांव को छोड़कर चले गए, आखिर कुछ ना कुछ वजह तो जरूर रही होगी।
1: भटकने कारण था कि उसमें नदानी था, हमको सोच समझ का मतलब फर्क नहीं समझ रहे थे हम, जैसे हमको कोई परेशानी था लेकिन मतलब नदानी की वजह से हम भटके और गलत रास्ता को चुने रहे थे।
0: धनेश्वर जी, ज़्यादातर देखा जाता है कि जब युवाओं के पास कोई रोज़गार नहीं होता है या फिर जब वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं या फिर कहीं अशिक्षा की वजह से, जैसा कि आपने कहा कि नादानी थी, आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाए और इस ओर आ गए। कई बार जो हमारे ऐसे भाई बहनों से हमारी बातें हुई तो उन्होंने बताया कि संगठन की तरफ से एक बात और कही जाती है कि हर परिवार से एक बच्चा हमारे संगठन में शामिल हो, ऐसी उनकी मांग रहती है। तो क्या इस तरह की कोई वजह आपके साथ भी शामिल हुई?
1: मेरे साथ तो ऐसा शामिल नहीं हुआ लेकिन ऐसा फरमान कई बार किया जाता था, आज से 15 साल पहले ऐसा फरमान किया जाता था कि घर घर से एक एक व्यक्ति को देना है, संगठन में जोड़ना है, ऐसा करके लीडर लोग करते थे लेकिन 15 साल पहले का बात है। अभी तो समाप्ति की ओर है, और भटकाव का रास्ता, मुख्य भटकाव का रास्ता होता है बेरोजगारी, नशा और दबंग द्वारा कमजोर लोग को दबाया जाना। ये भी मुख्य कारण है कि लोग भटक जाते हैं और गलत रास्ता का रुख अख्तियार करते हैं।
0: धनेश्वर जी, अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने सदस्य हैं?
1: मेरे परिवार में पत्नी है, पत्नी का नाम रीता देवी है, और मेरे माता पिता दोनों गुजर गए हैं। तीन भाई हम लोग हैं, छोटा भाई हैं मेरा, तीन बच्चे हैं, तीनों लड़का है।
0: 2018 में आप मुख्यधारा में वापस आए, तो इतने दिनों में आपने क्या क्या समस्याएं झेली, परिवार से अलग रहने का तकलीफ और जो दुख होता है वो भी आपके अंदर ज़रूर रहा होगा, तो अपनी भावनाओं को, अपनी यातनाओं को कैसे आपने झेला और कैसे आप इस ओर आने का निर्णय ले पाए?
1: 2018 में सरेंडर किया तो मैं 3 साल जेल में रहा, तो 3 साल जेल में रहने का मतलब वजह से घर में तो परेशानी हुआ ही, बहुत तरह का परेशानी हो रहा था, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं हो रहा था। जेल से निकले तो जेल से निकलने के बाद लगा कि हम जंगल से निकल के हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और महसूस लग भी रहा था कि अच्छा महसूस कर रहे हैं, डर भय नहीं था, अच्छा लगा कि सरेंडर पॉलिसी जो सरकार का है वो बहुत अच्छा है, और हम लोग भी इसमें लोगों को जागरूक किया कि ये सरेंडर पॉलिसी अच्छा है, शामिल होइए। लेकिन हम लोग का निकलने के बाद भी, जेल से निकले सरेंडर करने के बाद, तो जो हम लोग को रोज़गार मिलना चाहिए हम लोग को शून्य है, जीरो है। हम लोग भटक रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, कैसे बच्चा को पढ़ाए, कैसे अपना पेट भरे, ये हम लोग को चिंता खाई जा रही है।
0: यानी अभी भी रोजगार की समस्या आपके साथ है और परिवार के लालन पालन में आपको समस्या आ ही रही है, तो इसके लिए आपने क्या प्रशासन के पास कुछ निवेदन किया या फिर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई हैं?
1: प्रशासन से तो निवेदन किया हूं कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है देख लेंगे देख लेंगे, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला।
0: तो आप प्रशासन से और हमारी जो सरकार है उससे क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे?
1: सरकार और प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक महीने जितने भी सेंडर पॉलिसी किए हुए हैं और मुख्य

0: में जुड़े हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल पॉलिसी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। मैं सरकार और प्रशासन से यह अपील करता हूँ कि रोजगार मिले ताकि दोबारा लोग भटके नहीं।
1: नरेश जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, आपने अपने गांव का क्या नाम बताया? लातेहार जिला के? तो
0: जीपुआ टोला बुचुआ थाना बलुआ।
1: आपके गांव की अभी क्या स्थिति है, कैसा विकास वहां आप देख रहे हैं? जब से आप वहां रह रहे हैं तब से लेकर अब तक क्या विकास हो पाया है?
0: सरकार के द्वारा विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। सो रोड पुलिया जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ बन ही रहा है। तो सरकार का जो मतलब स्वास्थ्य शिक्षा थोड़ा समस्या है। मेरा पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था का सुविधा नहीं है, प्रखंड जाना पड़ता है।
1: तो अमूमन वहाँ के लोग किस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं लोग?
0: खेती बाड़ी करते हैं और बहुत लोग हैं जो कि पलायन कर जाते हैं, बाहर जाने का मजबूर हैं। खेती के टाइम में खेती करते हैं, उसके बाद बहुत ऐसा नौजवान है जो कि बेरोजगारी में बाहर जाके मतलब काम करने के लिए मजबूर हैं।
1: आपने कहा कि आपके दो बच्चे भी हैं,
0: तीन तीन
1: तीन बच्चे
0: तीन
1: हैं,
0: तीन
1: तो इन तीनों को क्या अभी आप पढ़ा रहे हैं स्कूल
0: जी
1: में, वो
0: पढ़ा
1: शिक्षा
0: पढ़ा
1: ले रहे हैं?
0: रहे हैं।
1: तो पढ़ाई की क्या सुविधा है गांव में, कहाँ?
0: गांव गांव में नहीं, हम रांची में ही पढ़ा रहा हूँ।
1: अच्छा।
0: तो हम जो सरकार देती है उससे तो पूरा वहन नहीं होता है। यहाँ स्कूल में भी री एडमिशन के नाम पर से लेके मतलब बुक इतना मैंने थोप दिया जाता है कि जितना सरकार दे रही पैसा उससे हम लोग को संभव नहीं हो पा रहा है।
1: यानी अपनी तरफ से भी
0: अपनी
1: आप,
0: तरफ से हम पैसा लगा रहे हैं जिससे पैसे करते हैं।
1: धनेश्वर जी, अभी जो समस्याएं वर्तमान में हैं, यानी जितनी पैसे सरकार द्वारा आपको मिल रहे हैं आत्मसमर्पण करने के बाद जो लाभ मिलने चाहिए उसमें से कुछ लाभ आपको मिल पाया है और कुछ नहीं मिल पाया है, तो अंत में जो अभी सुन रहे हैं आपको, मैं चाहूंगी कि आप एक संदेश के तौर पे उन तक अपनी बात पहुंचाएं कि मुख्य धारा से कैसे वो जुड़े और किस तरह से इन आत्मसमर्पण नीतियों का लाभ लें और पुनर्वासन नीति का लाभ लें।
0: जो सरकार का पॉलिसी है उसमें तो मिल रहा है, सुविधा मिल ही रहा है। बहुत लोग का है जो कि नहीं मिल रहा है, गिने चुने लोग को मिल रहा है। बहुत लोग हैं जो कि जगह में पहुंच नहीं सक रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि अच्छा पदाधिकारी से मिलके और जो सुविधा है उस लिया जाए। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ ये माध्यम से, जो बात कर रहा हूँ माध्यम से, कि हम लोग सरेंडर प्रोसेस के तहत सरेंडर किए, उसके बाद जमानत चाहे रिहाई करके हम लोग जेल से निकल गए। उसके बाद भी हम लोग को प्रशासन द्वारा पुराना केस को रीओपन करके और हम लोग को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये बहुत दुख दुख की बात है। पूरा परिवार, समाज से लेकर सब लोग दूसरी नज़रिए से मतलब देखने के लिए मजबूर हैं कि सरकार आखिर क्यों ऐसे कर रही है। जब सरेंडर किए, सरेंडर करने के बाद जेल से निकल गए, उसके बाद अचानक आती है पुलिस और सीधा जेल भेजने के काम कर रही है। तो मैं सरकार और प्रशासन विभाग से मैं अपील करता हूँ कि ये सिस्टम में थोड़ा हम लोग को रियायत दें। और मैं क्या कहूँ,
1: धनेश्वर जी, ये हमारी भी गुजारिश होगी प्रशासन और हमारे सरकार से कि आत्मसमर्पण किए हुए जो हमारे भाई बहन हैं जो इस ओर वापस आ रहे हैं, अपने परिवार से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने गांव में रह रहे हैं, इन लोगों के लिए सुविधाएं थोड़ी बढ़ाई जाएं, जो आत्मसमर्पण नीति के तहत लाभ देने हैं वो लाभ इन्हें मिले। और मैं ये भी चाहूंगी कि रोजगार से इन्हें जोड़कर सशक्त बनाया जाए। धनेश्वर जी, आप कार्यक्रम के लिए समय निकाले, यहाँ तक आए और अपनी बातों से हमें अवगत कराया। आपकी खुशहाल जीवन के लिए और परिवार में खुशहाली आए इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। श्रोता मित्रों, नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सली गतिविधियों के कम होने का असर कई जगहों में हो रहा है। गांवों में ग्रामीणों का जीवन सहज हो रहा है। झारखंड में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो जाने से विकास का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचेगा। श्रोताओं, सरकार ने आत्मसमर्पण नीति बनाकर नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का अच्छा अवसर दिया है। झारखंड पहला नक्सल प्रभावित राज्य है जिसने इतनी अधिक सकारात्मक आत्मसमर्पण नीति के साथ पुनर्वास की योजना बनाई है। आज हमारे भाई बहन जो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, इनके चेहरे पर विकास एवं राहत भरी खुशी हम देख सकते हैं। श्रोता मित्रों, इस बातचीत के बाद आइए चलें मनोरंजन की ओर और सुने ये गीत।

जब एक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने परिवार से दूर चला जाता है, घोर जंगलों में भटकने के लिए विवश हो जाता है या किसी वजह से वो जंगलों में इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाता है, तो ऐसे में उसे अकेलापन भी महसूस होता है। अकेलेपन से एक बात मुझे याद आई, अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं वे लोग सामाजिक तौर पर सबसे मिलने जुलने वाले और सबके साथ रहने वाले लोगों से 50% तक कम जीते हैं। अकेले होने का मतलब शारीरिक रूप से अकेले होना नहीं है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस न करना है। अगर आपको अपने अकेलेपन की वजह पता है और वो वजह आपके दायरे में है, तो जल्द से जल्द उस वजह को खत्म करने के विकल्प तलाशिए, और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ने के नए विकल्पों पर ध्यान दें। जिनसे बातें करने पर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो और आप प्रसन्नता का अनुभव करते हो, आप उन्हीं से बातें करें, अपने विचारों को उनके सामने रखें, आपका खालीपन यानी अकेलापन कुछ हद तक खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, अपनी इस बातचीत के बाद आइए आपको लिए चलती हूँ गीत संगीत की ओर और सुनवाती हूँ एक प्यारा संगीत।

इस गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम अवसाद चले का वक्त अब यहीं समाप्त होता है। सिंधु मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, भेंटकर्ता एवं प्रस्तुति सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति संयोजन प्रभु शरण, 546.45।

थकेंगे, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस सरगम, 5 बजे का वक्त होगा हमारे युवा दोस्तों का युवाड़ी के कार्यक्रम में, 5:30 पर कार्यक्रम श्रमिक लोग प्रायोजित प्रस्तुत किया जाएगा, 6 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का,

6:02 पर खेती बाड़ी से जुड़ा कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुन सकेंगे। 6:30 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया। 6:55 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा और 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का।

8 बजे आप सुन सकते, 8:15 का वक्त रहेगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, समाचार संध्या 8:45, न्यूज़ एट 9 9 बजे, और 9:15 पर उर्दू में समाचार। 10 बजे का वक्त रहेगा कार्यक्रम सुनहरी यादें, 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत। 11 बजे का वक्त होगा हिंदी समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की मुख्य झलक। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:34 और 2 सेकंड हो चुके हैं। 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो के हमारे इस मनमोहक और संगीत से सजे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम का नाम है सुर संगम। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतीक्षा पांडे, आ गई हूं आपके साथ। हाजिर हूं एक ऐसा सफर जहां सुरों की महक, मौसम की मस्ती और आने वाले राष्ट्रीय पर्व का जोश भी है। दोस्तों, प्रकृति ने इस समय अपना सबसे खूबसूरत श्रृंगार किया हुआ है। चारों तरफ हरियाली है, रिमझिम फुहारे हैं और मन मयूर बनकर नाचने को बेताब है। अरे हाँ, भला सावन के इस महीने में सुहाना मौसम और गीतों का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आइए इसी सावन की मधुश हवाओं के साथ अपने सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत और सदाबहार गीत।

जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत से गाने के बाद सच कहूँ दिल झूम उठता है और अपने पिया की याद आ जाती है। और सच में ये सावन का महीना सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि एक ऐसा महीना है जब सावन आते ही खेतों में हरियाली की चादर बिछ जाती है, झूले पड़ जाते हैं और हमारे लोकगीतों से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक सावन का जादू छा जाता है। याद कीजिए हिंदी सिनेमा में जब भी प्यार का इजहार करना हो या बारिश की बूंदों में भीगते हुए रोमांस दिखाना हो तो निर्देशकों की पहली पसंद यही सावन का महीना होता है। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर आज के दौर में बारिश के गानों ने हर पीढ़ी के दिलों पर राज किया है। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर आगे बातें करते रहेंगे, यूं ही और साथ साथ चलते रहेंगे गाने।

इस प्यारे से खूबसूरत गीत के बाद कार्यक्रम सुर सरगम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुर सरगम में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सावन के सुहाने बादलों के बीच आकाशवाणी में स्टूडियो में एक और महक हमें महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, और वो है आज़ादी के पर्व की। हमारे स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की खुशबू आने लगी है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब हमारा पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाएगा। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में तैयारी जोरों पर है, देशभक्ति के तराने गूंजने लगे हैं और हर दिल में बस एक ही जज्बा है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है, तो क्यों ना इस राष्ट्रीय पर्व के जोश को और थोड़ा बढ़ाया जाए। और सुनते हैं देशभक्ति से भरा ये प्यारा सा गीत जो आप में जोश जरूर भर देगा। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, शुभ दिन आ रहा है और वो शुभ दिन है हमारा 15 अगस्त। जी हाँ बिल्कुल, इस गाने को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए और देशभक्ति का जो जज्बा है वो और उमड़ घुमड़ कर हमारे अंदर आ गया है। तो अब बात करते हैं हमारे चहेते बॉलीवुड के कलाकारों की। अगस्त का महीना बहुत सारे चीज़ों के लिए जाना जाता है, सावन हो, आज़ादी का दिन हो, और कई जाने माने सितारे भी होंगे जिनका इस महीने जन्मदिन हुआ होगा। और अगस्त के इस पखवाड़े में बहुत सारे लोगों का जन्मदिन पड़ता है, जैसे कि श्रीदेवी और एक्टर सुनील शेट्टी जी का जन्मदिन अगस्त में ही पड़ता है, और हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जिनका जन्मदिन भी इसी महीने पड़ता है। तो क्यों ना इन कलाकारों के नाम एक खूबसूरत सा गाना समर्पित किया जाए जिन्होंने अपनी कला से हमारी दुनिया को रोशन किया है। तो आइए इन सभी कलाकारों के लिए समर्पित एक गाना सुनते हैं जो हमारे सभी कलाकारों को हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि वो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं और हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं।

और ये थी आज सुर सरगम की हमारी आखिरी प्रस्तुति। तो अपनी दोस्त प्रतीक्षा पांडे को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सरगम, ये आकाशवाणी रांची है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और सांठगांठ का आरोप है। विधानसभा घेराव के लिए निकले आंदोलित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेट नंबर 1 मार्ग तक पहुंच गए हैं और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि इसी गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट महानुभावों का विधानसभा में आना जाना होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरायकेला खरसावां जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर 11 से 14 अगस्त तक जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में योजना की कार्यप्रणाली, कार्यों की स्वीकृति, मजदूरी भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में समाहरणालय में आत्मा शासकीय निकाय की बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से

जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और परिभ्रमण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। लातेहार पुलिस ने एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 146 किलो गांजा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मकैया टाड़ पिकेट से बिहार जा रही कार को, रेकी में इस्तेमाल की जा रही एक बोलेरो को भी जब्त किया है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर बनई नदी से लाए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में। आज की सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के सांध्यकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में सजे चंचुनिंदा गीत। संध्या के 5:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी और संध्या 6 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 पर हम आपके साथ होंगे क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम हो अखड़ा को लेकर। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी। संध्या 7 का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल को आप सुनेंगे संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा जो कि प्रसारित की जाएगी आकाशवाणी रांची से। संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा का प्रसारण होगा रात्रि के 8:00। रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10 प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी।

तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर से सजे चनचनिंदा नगमे। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म सलामी से।

ये गीत श्रोताओं, आपने सुना फिल्म सलामी से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कभी हाँ कभी ना से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार कुमार सानू के स्वरबद्ध चुनिंदा गीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म आसिकी से, आवाज गायक कलाकार कुमार सानू की।

गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में गाए हुए फिल्म बरसात के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने आपको सुनवाया एक ही गायक कलाकार कुमार सानू को।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

लोकगीतों से। तो आज की हम चर्चा में बातें करेंगे जो समाज के विकास के लिए या खास करके जहां अनुसूचित जनजातियां या आदिवासी रहते हैं उन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उनके संबंध में जानकारी रखना जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आज हम चर्चा में बातें करेंगे कि केंद्र सरकार जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो खनिज संसाधन है इन खनिज संसाधनों से जो रॉयल्टी उन्हें मिलता है सरकार को या कंपनियों को उसका लाभ हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसके माध्यम से हम कर सकते हैं अपने उन क्षेत्रों के विकास के लिए। श्रोताओं, आज़ादी के तुरंत बाद जब संसदीय शासन प्रणाली में हमारे जनप्रतिनिधि लोग पहुंचे 1952 में और सरकार के माध्यम से या संसद के माध्यम से कई कानूने बनी, परंतु उस समय केंद्र में जो योजनाएं बनानी थी और अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में जो सूचीबद्ध था 1950 को, उन क्षेत्रों में खनिज संसाधन की बहुतायत है और वहां बेरोजगारी है, गरीबी है, कुपोषण जैसे समस्याएं मौजूद थी। परंतु उस समय कंपनियों को प्रतिबद्ध नहीं किया गया था कि उनसे जो रॉयल्टी उन्हें मिलता है उसका उपयोग कैसे करेंगे, और कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 इस अधिनियम के तहत सरकारें खनन परियोजनाएं संचालित करती थी। परंतु कंपनियां इस अधिनियम के माध्यम से उस क्षेत्र विशेष का खनिजों का दोहन करती थी, परंतु उन क्षेत्रों के विकास के लिए उन पर बहुत ज़्यादा निरंतर या नियंत्रण नहीं रखा गया था। परंतु 2015 में केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 में संशोधन करके और कुछ उसमें धाराओं को जोड़ा गया और उसी के तहत जहां अनुसूचित क्षेत्र जिले हैं उन जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया गया कि आप अपने राज्यों में और उन जिलों में जहां अनुसूचित क्षेत्र के रूप में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है या गैर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध था वहां पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट एक स्वायत्तशासी संस्था आप गठन कीजिए जिसमें उपायुक्त उसके अध्यक्ष होंगे, उसके साथ साथ जिले के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सांसद है, विधायक हैं और नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं इनके सदस्य होकर एक गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया जाएगा 2015 में। इसके तहत प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन हुआ है इस झारखंड में, इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में भी, जिसे हम DMFT कह सकते हैं। और इस DMFT में उस क्षेत्र विशेष पर या उस जिले में जितने कंपनियां हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना उस अंश उसमें डालते हैं DMFT फंड में, और उस DMFT फंड का उपयोग गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के डिमांड के अनुसार या स्थानीय जनप्रतिनिधियों या ग्राम सभाओं या पंचायती सरकारें या जिला परिषद इनके अनुशंसा के आलोक में इस DMFT फंड से कई प्रकार की विकास परियोजनाओं का संचालन किया जाता है, खास करके पेयजल से संबंधित हो,

प्रदूषण मुक्त से संबंधित हो, या स्कूल हो, या शौचालय हो, या अन्य बहुत सारी गरीबी उन्मूलन से संबंधित हो, सिंचाई से संबंधित हो, इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। परंतु DMFT फंड में कई राशियां मौजूद रहती है, प्रतिवर्ष उनका खर्च नहीं हो पाता है। इन योजनाओं का संपूर्ण रूप से उपयोग हो, इसके लिए आम जनता को, ग्राम सभाओं को जागरूक होना होगा और ऐसे योजनाओं को चयन करना चाहिए जिससे उसका गांव का सर्वांगीण विकास हो। खास करके DMFT फंड जैसी योजनाओं से यदि कोई योजनाएं संचालित की जाती है तो ऐसे योजनाओं का चयन किया जाना चाहिए कि उस राशि का खर्च होने के बाद उससे जो परियोजनाएं संचालित की जानी है उससे आय में बढ़ोतरी हो, या रोजगार उन्मुख या रोजगार सृजन कार्यक्रमों का इस DMFT फंड के माध्यम से संचालित करने की जरूरत है। इसके लिए ग्राम सभा को बहुत ही अधिक जागरूक होना होगा ताकि अपने गांव में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता से संबंधित हो, या और भी जो समस्याएं हैं उस क्षेत्र में, पेयजल से संबंधित हो या आवागमन से संबंधित हो, इन सारी समस्याओं का निदान इस DMFT फंड के माध्यम से किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि हम उन योजनाओं का चयन करें जिससे गांव में रोजगार का सृजन हो सके। श्रोताओं, यदि हम इस प्रकार की योजनाओं का चयन करते हैं तो निश्चित ही हमारे गांव में लोगों को, खास करके हमारे युवा, बेरोजगार युवा युवती जो चेन्नई की ओर जा रहे हैं, उस पर रोक लगेगी और कुपोषण जैसी समस्याएं जो मौजूद है इस DMFT फंड ट्रस्ट के माध्यम से जो योजनाएं संचालित की जानी होती है उस पर हम लोग नियंत्रण रख पाएंगे, लोगों को बाहर जाने से हम लोग रोक पाएंगे और यहीं पर अपने जिले में ही रोजगार देने का लायक हम उन्हें बना पाएंगे। श्रोताओं, इसके साथ साथ इस योजना के तहत प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जिन क्षेत्रों में खनन परियोजनाएं संचालित की जा रही है वहां पेयजल की समस्याएं रहती है। उन पेयजल की समस्याओं का निदान भी हम इस DMFT फंड से हम कर सकते हैं। जरूरत इस बात का है कि हम उस योजनाओं का या उन योजनाओं को हम कैसे लागू कर पाएंगे, इसके लिए ग्राम सभा की बैठक की जरूरी है। साथ ही साथ समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की भी आवश्यकता है कि अपने गांव के विकास में एक बेहतर परियोजना 10-15 साल के लिए एक मास्टर प्लान बनाएं कि हम अपने गांव का विकास 5 साल में हम कैसे कर सकते हैं, 10 साल में किन योजनाओं की जरूरत है और 25 साल में किस प्रकार की योजनाओं का चयन किया जाना चाहिए, किस प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बन सके। यदि हम इस योजना का सही रूप से चयन करते हैं और गांव को यदि हम आत्मनिर्भर बनाते हैं तो निश्चित ही हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम सार्थक उन्हें बना सकेंगे। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंट वार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि की जरूरत क्यों है। आज कई युवा बाहर जा रहे हैं, ऐसे स्थिति में हमें पुनः खेती की ओर या गांव की ओर लौटने की जरूरत है। जानकारी लेते हैं एक महिला किसान से।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, आज हम जानकारी लेंगे एक महिला किसान से कि वर्तमान समय में खेती करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमारे युवा आज के समय में चेन्नई, गुजरात, बेंगलोर या उन राज्यों की ओर जा रहे हैं खेतों को छोड़ करके। यदि हम खेतों को छोड़ते हैं या खेती नहीं करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, और वर्तमान समय में ये महिला क्या क्या कर रही है उसके संबंध में भी जानकारी लेते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
2: जोहार।
1: आपका शुभ नाम?
2: मैं संयोगिता सोए।
1: अच्छा, तो संयोगिता जी, आप इस समय क्या कर रही हैं गांव में?
2: मैं खेती करती हूँ, खेती किसान हूँ। मैंने फल वृक्ष लगाए हैं और चावल दाल इन चीजों का खेती करते हैं।
1: तो मौसम के अनुसार, क्योंकि खेती करने की बात आती है, तो आपके खेतों में पानी का क्या सुविधा है?
2: मेरे पास तालाब है।
1: अच्छा, तालाब है।
2: तालाब है, इसलिए हमको पानी का असुविधा नहीं होता है।
1: अच्छा, ये तो आपका खेतों में देख रहे हैं अमरूद है, आम है, ये कई कलमी आम सब है। आज के समय में गाँव से कई युवा या महिलाएं भी बाहर जा रहे हैं और खेतों को छोड़ रहे हैं, क्या खेती करना छोड़ देना चाहिए, आपके क्या कहती हैं?
2: देखिए, सबसे पहले तो भारत खेती प्रधान देश है, यहाँ पर खेती होना ही चाहिए और जिनके पास जमीन है उनको खेती करना ही चाहिए। किस लिए कि अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? नौकरी करके आप पैसा तो कमाते हैं, खाते तो अनाज ही हैं। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो अनाज शहर तक पहुंचेगा कैसे?
1: नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि हम बाहर देशों से, विदेशों से हम लाएंगे, हमको खेती करने की क्या जरूरत है?
2: विदेशों से अनाज आता है, लेकिन इस तरह करने से क्या होगा, हम लोग गुलाम बन जाएंगे
1: आर्थिक रूप से
2: गुलाम बन जाएंगे। वो अपना मनमाना दाम लगाएगा और जिस प्रकार श्रीलंका में हुआ कि उन लोगों को अनाज और ये नहीं मिल रहा था क्योंकि वो लोग डिपेंड थे बाहर देश से आने वाला अनाज पर, वो लोग निर्भर थे। लेकिन ऐसा करने से हम लोग गुलाम हो जाएंगे, हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे।
1: अर्थात आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेती तो करना ही पड़ेगा,
2: करना,
1: तभी हम शायद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्या हमारा देश गुलामी से पहले आत्मनिर्भर रहा होगा?
2: बिल्कुल रहा था, खाने पीने का देश को कोई कमी नहीं था। पहले बाहर कुछ दूसरे देश की तरह नहीं कर पा रहा था, लेकिन खेती तो बहुत बढ़िया था तब भी। लोग सोने का चिड़िया कहलाता था भारत,
1: क्योंकि यहाँ से मसाला जैसे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, हल्दी जैसी, मोर पंख जैसे चीजें हैं, बाहर मतलब विदेश में जाता था। तो वर्तमान समय में आप जो खेती करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या की तैयारी कर रहे हैं अभी आप?
2: अभी मेरा खेत तैयार है रहर का खेती के लिए।
1: अच्छा, रहर का खेती के लिए, तो ये रहर का खेती का समय अभी उपयुक्त है क्या?
2: बिल्कुल, अभी तो इसका सीजन चल रहा है, 15 जून से, मतलब आज से लेकर जुलाई के 18-20 जुलाई तक इसका समय रहता है। तो इस बीच में रहर का बीज लगा देने से बारिश भी पाता है, धूप भी पाता है, जिससे उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा, तो इसमें क्या किसी भी प्रकार की किस्मों को या प्रभेदों को हम लगा सकते हैं कि कुछ चुनिंदा फसलों को ही लगाना चाहिए?
2: देखिए, अच्छा फसल पाने के लिए तो अच्छे क्वालिटी का बीज लगाना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का लगाएंगे तो एक पौधे से अधिक मात्रा में फल मिलेगा, बीज ज्यादा निकलेगा, तो उससे किसानों को ज्यादा लाभ होगा।
1: तो हमारे इस झारखंड के लिए या सिंहभूम या सरायकेला जिला के लिए ऐसे कौन सी किस्में हो सकती है?
2: हाँ है, जैसे T21, BR65, बिरसा अहर 21 और लक्ष्मी।
1: अच्छा, इन किस्मों को हम लगा सकते
2: हैं? लगा सकते हैं।
1: तो इसमें जो खाद वगैरह है क्या सब लगाना चाहिए?
2: खाद है, DAP लगा सकते हैं, पोटास लगा सकते हैं और जैविक खाद डाल सकते हैं।
1: तो गोबर खादों की भी जरूरत पड़ेगी?
2: हाँ, खेत तैयार, बीज डालने से पहले खेत जब हम तैयार करते हैं तब हम गोबर खाद या कंपोस्ट ये सब डालते हैं।
1: अच्छा, तो ये यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जमीन की तैयारी कैसी करनी चाहिए उस साल?
2: इसको हम लोग, इसका जो खेत है इसको खेत नहीं बोलते, हम लोग गोड़ा

0: हरियाणा में इसका खेती होता है और उसको ट्रैक्टर से कम दो बार ट्रैक्टर चला के महीन थोड़ा जुताई होना चाहिए, जिससे कि मिट्टी का ढेला ना रहे। और उसके बाद बीज को थोड़ा दूर दूर डालना चाहिए, ऐसे केवल छिड़काव कर देने से कभी कभी क्या होता है, बीज एक जगह में दो चार बीज एक जगह गिर जाता है, तो उससे बीज का सही इस्तेमाल नहीं होता है। और एक ही जगह दो चार पौधा उगेगा तो ठीक से ग्रो नहीं करेगा, कोई एक पौधा ठीक से बढ़ जाएगा, बाकी दो है या तीन है तो वो छोटा ही रह जाएगा, ठीक से फलेगा फूलेगा नहीं। और हम लोग को तो चाहिए कि हर एक बीज उगे और हर एक बीज अच्छा से फल दे, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा दूरी में बीज को डालना चाहिए, जैसे एक एक हाथ का दूरी में एक एक बीज डालना चाहिए, क्योंकि पौधा छोटा में तो छोटा दिखता है लेकिन जब वो बढ़ता है जगह पाता है तो अच्छा से फैलता है और बढ़ता है।
1: अच्छा, इसमें और एक जानकारी दीजिए, बहुत सारे हमारे जो किसान है मेड़ों पे बीज लगाते हैं या तालाब के जो मेड़ बने रहते हैं नए खुदाई का, वहाँ पर क्यों लगाते हैं, उसमें देखते हैं कि उत्पादन बहुत अच्छा होता है।
0: अच्छा होता है क्योंकि जैसे तालाब नया खुदा रहता है उसके ऊपर जो मिट्टी डाला रहता है जिसको हम लोग आड़ बोलते हैं, वो आड़ जो है मिट्टी अभी टाइट नहीं हुए रहता है, तो उसके वजह से उसमें रहड़ का खेती बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको जड़ फैलने का और जड़ बनने का जगह बहुत मिलता है, इसलिए उसमें बहुत अच्छा से ग्रो करता है।
1: अच्छा,
0: ठीक तरह से बारिश नहीं हुआ तो पानी का थोड़ा सा व्यवस्था होना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता है, ये पानी का व्यवस्था तो उस आपातकाल में लगाना पड़ता है जब बारिश सही ढंग से नहीं हुआ, तो अगर बारिश हुआ तो उसमें पानी भी नहीं पटाना पड़ेगा।
1: तो क्या हम इस अरहर की यदि खेती करते हैं तो क्या ढलान नुमा खेतों में जहाँ पानी का जमा हो ना हो ऐसे जगह को खेती करना चाहिए कि जहाँ पर दोन जमीन हो वैसे जगह?
0: नहीं नहीं, ढलान में इसका खेती करना बहुत अच्छा रहता है, पानी तो चाहिए लेकिन पानी का जमाव नहीं चाहिए, रहर को पानी तो चाहिए पानी का जमाव नहीं चाहिए जहाँ।
1: अच्छा, इसके साथ साथ ये जानकारी दीजिए कि वर्तमान समय में लोग जो खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो आज के समय में और इसको छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो किसान है इतना अच्छा फसल है इसके बावजूद यहाँ हम बाहर से यदि आपका दलहनी फसलें या अरहर जैसे आ रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है, हम कैसे रोक सकते हैं इसको, अपने क्षेत्रों में कैसे हम उगा सकते हैं इसको?
0: देखिए, किसान के पास मार्केट नहीं है हमारे क्षेत्र में दाल के लिए, उनके पास मार्केट नहीं है, वो लोकल मार्केट में बेचते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है, वो जितना उसको मिलना चाहिए उसका कीमत सही कीमत नहीं मिलता है, और इसका प्रोसेसिंग यूनिट भी आसपास में नहीं होने के चलते इनको व्यवसायिक स्तर से खेती नहीं करते हैं, अपनी जरूरत भर का कर लेते हैं।
1: अर्थात यदि हम व्यवसायिक स्तर पर खेती करना चाहें तो इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट हो या गोदाम हो या इस प्रकार, या किसानों को और भी ऋण मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान हो सकता है केसी से तो लेना चाहते हैं लेकिन वो व्यावसायिक स्तर पर खेती करना चाहेंगे हमारे किसान, तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है मशीन चाहिए, यदि ये सारी की सारी यदि उन्हें उपलब्ध कराई जाए तो क्या लगता है कि हाँ खेती करेंगे?
0: हाँ, अगर इस तरह का सुविधाएं अगर किसान को मिलेगा तो वो जरूर उसका खेती करेंगे। और
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे एक महिला किसान से कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत के लिए हमें खेती करना जरूरी है। इस भेंटवार्ता के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
2: श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए मुख्य समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और सांठगांठ का आरोप है। विधानसभा घेराव के लिए निकले आंदोलित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेट नंबर 1 के मार्ग तक पहुंच गए हैं और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि इसी गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट महानुभावों का विधानसभा में आना जाना होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 लाख रुपए मूल्य के 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साहिबगंज में आज वीबीजी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरडीए निदेशक विजय कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने शिक्षा विभाग की बैठक में ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर लापरवाही बरतने के आरोप में गुमला सदर के बीपीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोनों समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न कराने वाले शिक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए छात्र शिक्षक उपस्थिति डेटा में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पर्यावरण धर्म के प्रणेता डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नई दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें थाई किंग प्रजाति के जामुन का पौधा भेंट किया। डॉक्टर कौशल ने पूरी दुनिया से एकजुट होकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगा

हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा।

नया आकाशवाणी रिया चाई भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज रिबन आई में तना ना आयुब पिंग छे बजाय ने ते 2 मिनट हो बस काया ना कार्यक्रम हो अकड़ा आयु मिच बेन लगे बेटा जो के नलिंग महेंद्र गोई है सभी को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लेका गे इस पूरे लिंग सगमागु तेरे इना को मियन मियन तिलिंग आयु मिच बेना आयुम लगे एफएम रेडियो जपारे ताइन बन चेमर ना तरंग बन जपाओ जो इन्हें एंड द एला आई मिच भी नलिंग सभी को ते आयर जानकारी रिया जगर जानकारी जगर या मिसे दो मिना दारू को रोया बन पर्यावरण बचा बन सरी दो सारी ते गे अबो दारू लो ओ उन्हों अबो हो जी बन ऐसो जपारिया संबंध मिना चिली के ते में रदो नले कते दारू बनो रदो अबो जीरो कबो ताई देवा मंतिया चिकते जीत कबो तयो मनरदे नॉलिंग जगरा बिना ची अब ना साइड लगिन ओकना ऑक्सीजन गैस बो मनिया इना दो अब दारू एते के बो न मेताना दारू जो आए ऑक्सीजन इमोबते ने अंडो अब दो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बो मनिते ना ओकना अब साइड के अब साइड के बाद रे अब जो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बो ऑल एतना लाइव भीतर एते साइन ऑल एतना इना आए साइड रुए तना ची आ इडी इतने मिनते आका जी एन लिखाते अब दारूलो ते ऐसो बुगिन संबंध ऐसो जपारिया संबंध में ना अंद दारू को अब रुए ते ऐसो रिना गोरो जो निया सुमेत दो बनो पर्यावरण बुगिन ताइन लगे दो दारू को रुए ते के बावा ऑक्सीजन गैस सुमेत दो बनो एन रे नंगा अब बुगिन होयोबु नमिया अंडो दारू ऐते अब ऐसो पूरे जिनिस को अब हमारिया लगे दे बनामी जो बा इन इनकन चीज को अब नन दारू है तगे नाम हुआ इन्हों में ते आते सभी निकन दारू को रोयतिया ऐसोरिना गोरजो में ना अब नन दारू को जाओ सिर में अब नीना रोयतिया ऐसोरिना गोरजो में ना जाओ सिर में वो रोय लगे दो अब कम से कम मीट भरोसा रे मिडो हो मोया दारू रुवातिया दूर करा चाहे मरंगनी या हुडिंगनी मिंदो नीना रुवायते गे हो बना एन रेनंगा अब पर्यावरण बचाओ दिए उन्हों बोगीते दबो तय हो मर तिसिंगे जानकारी या जगर दो निन्मूल रगे चबाओ तना एला उन्हों जो का एयरपालिंग एला दारा बिना हेरो परो रिया दुरंगलिंग आयो में चबे नमर ने अमर लिंग आयो में चबे अंतना अलबन तोड़ना नो मर अबन निना आयुम लगे ताइन बन

0: Naben ayımdan tekina hero porobriya duren. Birbel hasda ondo judikwa. Niat dureng janam ela ondo juga ayarpa. Bepta jagar. Swarojagar te abu chilike malik bo bayowa. Ya swarojagar jo mena inabo idikete abu malik bainte abu oroiche.
1: Duko tesing aling mite aling hoju kene ente aking lo aling ling japagara abu e anasul hora chilikete bu asulna mentia hora bu namete bot singdo endo ling bepatatna chi jwar gemar
2: jwar jwar
1: endo chilike abna upurum kodo
2: aling do buden sing hesa hatu do bedamundui kumardungi parkan jilla pachim sumbum jharkhand
1: acha
2: iya
1: acha endo do na basing do china akulang chiketene
2: ना पर्सिंग दो निंता अब जेएमपी चौक हिसा म्यूजिक सेंटर देवगम मार्केट रे अलिंग दुकान लिंग खुलाओ तरा मोबाइल दुकान को मोबाइल रिपेयरिंग नेते पोटो को पेन कार्ड को बहितिया नेते जेरस को बावा को हो किताब को मन लिंग आकरिंग तना
1: अच्छा
2: हाँ नेते डाउनलोड को मन हो बाव तना
1: अच्छा
2: हाँ
1: निना दो कौन रे मिना
2: निना दो अब चाईबासा हिसा म्यूजिक सेंटर जेएमपी चौक को मनिया एंड टाटा रोड latar na je pelayu war mena en latar bayi kene
1: oho acha inka nyayuma de beda mundu ido et kasang rina urise japa no par mena chi inka nyat karya
2: ka ge sayo ninta ete chai wasa ete lagbag 55 km saning mena
1: acha
2: ho kumardungi te lagbag 6 7 km mena andari te nipano mena andari tor paina nipano ene ndo urise do inta ete lagbag 20 km saning bawa
1: saning ne gachi
2: ha iya
1: acha thik ye ndo ol padao kada
2: ऑल पड़ा दो गिरसन को कंप्लीट ही है ने ते एलएलबी को मन कंप्लीट ही किने
1: या
2: हाँ
1: अच्छा इन दो अलग निना एसुबनियन जगह बन जगह करा ची एलएलबी मन कर दो ओकिल दे अपड़ाव को तिया
2: या या
1: इन दो अलग चिना रिया ने बिजनेस दो लंग बिजनेस थे ने
2: बिजनेस दो इन अलग लिंग बिजनेस था ना ची ना हो को एस पूरे बुलेल को तना काली पड़ा और दब नौकरी लगी के को पड़ा हुआ
1: इन
2: दो नौकरी तो इनका चीज तने कि नौकर को मिनिया नौकर को मिनिया इन दो आए चिली के मिता बिना इनका बन पाइटी या बन आपको आ गुलाम रे बन टाइने ना एस पूरे जुड़ी कोलिन लेल के को आले साथ रे को कोई ऑफिसर ग्रेटर को नौकरी ने कोई रेलवे रे को नौकरी ने कोई बैंकिंग रे को नौकरी ने इन कोता एते काजिलिंग आयुमिया अरे आले बैंक रे पाइटी तने बोले चाड़ा चाबा कना को मिनिया सीता एते ड्यूटी है मितामे 10 बजे ते ड्यूटी में ना 4 बजे मनिया एनरे सरकार इनका ना दबाव एमता लिया चिना 4 बजे आयु 6 बजे 7 बजे लगा वा कमनिया नीदे वाले ड्यूटी इन पात कोन जो इनको कमनिया इन दो एने इनका के विभाग मिना दो ना दो चलिके दरवा को बयुवा इनको इनका के अलता रिमिन प्रसार मिना जतन पाए 24 घंटा ड्यूटी को मनिया
1: अच्छा
2: एता आंडो इनका के मिना को रेलवे को नौकरी तने चिनाई करे अरे चिनाई ते नजु इन पा जाना हसुरियो दुकुरियो तकलीफ रियो नजु रे इन पाए तो छुट्टी दिए के एक सप्ताह रहा उजू रे 3 दिन लगा हुआ सेना और 3 दिन इनका उजू सेना और सप्ताह भर रहा छुट्टी चबा हुआ इंगाओ कान लेल दई अपो कान लेल दई कमिया
1: अच्छा अच्छा
2: इन दो इना कोड़ू के तलिंग उड़ू के अरे पड़ाव मा ऐसु दरकार तना काम इनते कागे पड़ाव मा सबिन रे पड़ाव दो तंते दरकार खास करके अबू होतिया दो ऐसु स्पेशल दरकार होतिया नाउ पड़ाव कान और हो को हो बसा बु हिले ते तना हो पड़ाव बु हिले ते तना नौकरी का नाम अंबु मनिया इन दो हो दो काहिले ते दरकार इन दो अब इंगा हयाम को मनिया ना दो इंगा दो काब रिंग इति अदर कर तो एने निसब तेगे अलिंग आयर तेगे लिंग उडुले टाइकिना बीचर दो उडिंग दो काकवे तो लिंग जायो अलिंग नोकरी लागि गेलिंग पडाव मेलि कलिंग उडुल दा इन दो चिलके चिलके तलिंग पडाव डिन तलिंग चिरगिल बाकडा सियाय इन दो लिंग ची पडाव रे दो नेलेका चकर बीर पास आवा या नेलेका एटा को दसिर बु दसी कनो मते चिकन लागि ची इन तो उडु बेकडा अच्छा सियालिंग सियाना पडाव ना लिंग बिजनेस मेडो लिंग रिके तर दो बिजनेस तर दो लिंग अलिंग इनता त अलिंग दवर लिंग असुल दई को निंतार मिना को चार पांच जन हो कोलिंग असुल कट को कम से कम नेतर पूरे में ना को या
1: अच्छा
2: अलिंग सात रखो पार्टी है स्कूल रुक पढ़ाओ तना तारा कॉलेज रखो पढ़ाओ तना निंता दुकान को जो है कोचिंग पार्टी रिको है तो मिसे दुकान को सेनवा और मिसे को कॉलेज को सेनवा
1: अच्छा
2: हाँ इन दो इनका मिना को आ इन दो अलिंग वैसे रासा कर इन चिरगिले तना अलिंग है साथ साथ अलिंग सुमे तो कलिंग असुल तना अलिंग साथ साथ रहे चार पांच जन हो को लाई ओलिंग पेरे तना इना जैसे मरंग चीत ने इना तो जब दुख तकलीफ वा रहे या हाथू रे समाज रे तुरंत को फोन किया निंदा तो 50 किलोमीटर अंजा अलिंग बिटा ना दो तीन घंटा बाद अलिंग बिटा ना इनको लीला तो को अलिंग जगरा तो को अलिंग तलिंग उजू रे निपा अंडो दुकान लिंग चला हुआ इन तनिंग तारे यो हन गणा को इनका लिंग लेल को तना परिवारों निपार मिना
1: अच्छा
2: जपा आ रहे हो इन पार मिना अंडो ᱮᱱ ᱥᱟᱛᱨᱮ ᱥᱩᱨᱟᱥᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱭᱟ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱤᱧ ᱮᱠᱴᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧᱮ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱯᱮ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱱᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱮ ᱪᱮᱱᱱᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱭᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ
2: ᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱚᱵ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱵᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱨᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱭ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱭ ᱵᱟᱢᱵᱟᱭ ᱨᱮ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱚᱣᱟᱫᱩᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱭᱠᱮᱴᱟ ᱠᱚ ᱟᱥᱛᱤᱛᱚ ᱡᱤᱠᱮ ᱢᱤᱴᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱱ ᱵᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝᱭᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱥᱟᱭᱚᱵᱮᱭᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱡᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱤᱝ ᱠᱮᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱞᱟᱥᱴ ᱨᱮ
1: ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱚᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱤᱱᱯᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ ᱵᱚᱱᱫᱩ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ
1: ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ
2: ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱠᱟᱠᱩᱨᱩ ᱱᱟᱭ ᱯᱷᱩᱞᱩ ᱱᱟᱭ ᱡᱩᱱᱤ ᱱᱟᱭ ᱥᱟᱵᱤ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱯᱟᱱᱟ ᱫᱟᱥᱛᱩᱨ ᱠᱚ ᱨᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱭ ᱠᱚ ᱟᱰ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱮᱱ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱨᱤᱝ ᱮᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱜᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱨᱮᱱᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱯᱟᱨᱜᱮ
1: ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ
2: ᱱᱟ ᱱᱤᱯᱟᱣ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱮᱞ ᱫᱮᱭ ᱤᱱ ᱯᱟᱣ ᱠᱟᱠᱚ ᱞᱮᱞ ᱫᱮᱭ ᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱞ ᱠᱮᱛᱮ
1: ᱦᱚᱸ ᱚᱦᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱛᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱤᱱᱠᱟ ᱵᱮᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱜᱩᱥᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱱᱟᱞᱟᱭᱟ
2: ᱱᱟ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ 1000 ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱟᱨ ᱯᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱞᱟᱠ ᱠᱟᱡᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ 1000 ᱫᱚ
1: 1000 ᱫᱚ
2: ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱩᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱩᱱ ᱜᱮ
1: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱩᱵᱮᱠᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱝ ᱢᱮᱱ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ
2: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱛᱟ ᱫᱩᱵᱮᱠᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱠᱟᱥᱴᱚᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱮᱱ ᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱩ ᱫᱩᱠᱮᱱ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱠᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱩᱜ ᱠᱚ
1: ᱤᱭᱟ
2: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱤᱭᱟ ᱫᱩᱠᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱵᱮᱣᱟᱨᱚ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱵᱮᱣᱟᱨᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱟᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸᱞᱤᱧ ᱨᱟᱥᱟᱣ ᱛᱟᱱᱟ
1: ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱛᱮᱱ ᱮᱢᱤᱛᱮᱱ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱨ ᱮᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱮᱥᱚ ᱛᱟᱠᱞᱤᱯ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱫᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱮᱱᱠᱟ ᱞᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱟᱨ ᱮᱲᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱱᱟᱞᱮ ᱞᱤᱧ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱤᱫ ᱫᱤᱠ ᱮᱱᱟ
1: ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ
2: ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱫ ᱫᱤᱠ ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱴᱟ ᱭᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱮᱱᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱨ ᱠᱟᱢᱱᱟ ᱛᱤᱧ ᱛᱮ ᱟᱫᱚᱨ ᱠᱟᱨ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱦᱚᱸ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱱᱤᱯᱟᱛᱟᱨ ᱯᱟᱨᱮ ᱮᱥᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱮᱱᱨᱚᱭ ᱢᱤᱱ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱚᱱ ᱴᱟᱭᱤᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱫᱩᱠᱟᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱮᱫ ᱟᱨ ᱠᱮᱥᱮᱴ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟ ᱴᱟᱭᱤᱠ

FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार।

चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि वो चीज़ है स्मार्टफोन, यानी कि आपके हाथ में रहने वाला मोबाइल फ़ोन। सही कहा ना जी श्रोताओं? रील्स देखने और चैट करने से हटकर क्या आप जानते हैं कि यही एक छोटा सा डिवाइस आपकी किस्मत और देश के भविष्य दोनों को बदल रहा है? अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें करने जा रहे हैं। हम आज आपके साथ बातें करने जा रहे हैं उस क्रांति की जिसने हम सबकी जिंदगी का नज़रिया ही बदल दिया और जीने का तरीका भी बदल दिया। तो अब आपके मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने मोबाइल फ़ोन के जरिए हम सबकी ज़िंदगी का तरीका बदल दिया। तो बिल्कुल श्रोताओं, इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदल दिया और तरीका भी बदल दिया है। तो चलिए अब हम आपके साथ ज़्यादा पहली न बुझाते हुए आपको बता ही देते हैं कि आज हम आपके साथ इस कार्यक्रम में किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। श्रोताओं, एक ज़माना था जब बैंक की लाइन हो या कॉलेज का फॉर्म, घंटों खड़े रहना पड़ता था। चाहे आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह का कोई करेक्शन करवाना होता था तो भी आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। परंतु आज डिजिटल इंडिया के कारण बस एक क्लिक और आपका काम हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस डिजिटल इंडिया ने हमारे दोस्तों, हमारे और हमारे अपनों के जीवन को कितना बदला है? इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए हैं? तो आइए आज इस विषय पर ही हम आपके साथ बात करेंगे विस्तार से। तो श्रोताओं, डिजिटल इंडिया एक ऐसी पहल है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए देश के युवाओं को सशक्त बनाती है। यह आपको घर बैठे शिक्षा पाने, नौकरी खोजने और कानूनी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने की भी सुविधा देती है। हमारे देश के हर युवा को इन पांच मुख्य बातों के बारे में पता होना ही चाहिए। सबसे पहला है डिजी लॉकर। दोस्तों, इस डिजी लॉकर में आप मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं। यह सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिजिकल कॉपी आपको साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल कॉपी अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं तो उसके खो जाने का डर रहता है, या फिर कहीं भी उसे कोई नुकसान हो गया तो आप उसे दोबारा पाने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर में अपने इन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखते हैं, अपना दस्तावेजों को यहाँ पे एकत्र करके रखते हैं, तो आप कहीं भी हो, आपके हाथ में ये सारी चीज़ें सुरक्षित हैं। इसके अलावा एक और ऐप है, वो है उमंग ऐप। एक ही ऐप पर सरकारी सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी इस ऐप पर आपको मिल जाती है। चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पीएफ से जुड़े हुए काम हो, या फिर गैस सिलेंडर की बुकिंग और बिजली का भुगतान इत्यादि कोई भी काम हो, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, और अब तो एजुकेशनल डिग्री और सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्मेट भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉलेज या यूनिवर्सिटी बदलने पर भी यहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है। नौकरी के इंटरव्यू के दौरान डिजिटल डिग्री दिखाना काफ़ी आसान होता है। सरकार उन लोगों को मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग देती है जिन्हें कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये खास सुविधा दी जाती है। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी दी जाती है। इसमें नौकरी के लिए उपयोगी सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। स्किल इंडिया डिजिटल और नेशनल कैरियर सर्विस यानी कि NCS, ये पोर्टल युवाओं को नई स्किल सीखने और नौकरी खोजने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। मुफ्त ऑनलाइन कोर्स और ट्रेनिंग सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी

0: के लिए आवेदन, प्रोफाइल बनाना इत्यादि हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया युवाओं के लिए एक तरह से डबल धार वाली तलवार की तरह काम किया करती है। यदि इसका आपने सही इस्तेमाल किया तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में आपको अवसर मिलते जाते हैं। ये आपको ज्ञान को भी बढ़ाती है और आपकी जेब को भी मजबूत करती है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में इसकी खास भूमिका होती है। और ये तो हर कोई जानता है श्रोताओं, हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर सही इस्तेमाल है तो उसका गलत इस्तेमाल भी है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यह आपके समय, ध्यान और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाएगी। ये कहने से तात्पर्य हमारा ये है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रील्स देखेंगे, आप सिर्फ चैट्स करेंगे या फिर सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे। बल्कि आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन उसका आप लाभ ले सकते हैं, उसको आप अपने बिजनेस से जोड़ सकते हैं, आप अपना उसमें फ़ायदा देख सकते हैं, वहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, तो हर चीज़ के इस्तेमाल करने का तरीका आपको सही तरीके से आना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का गलत उपयोग ना करें। डिजिटल होने से हमें काफ़ी सुविधाएं मिली है दोस्तों। आपने ये देखा होगा कि पहले बैंक में आपको रुपया निकालने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था, काफ़ी समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ता था। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं और अगर आपकी पॉकेट मारी हो जाती है या आपका बटुआ कहीं गिर जाता है या चोरी हो जाता है, तो ऐसे में आप बिल्कुल तटस्थ खड़े रह जाते थे कि अब हम क्या करें, हमारे हाथ में पैसे ही नहीं हैं, और ऐसी अवस्था में आपकी कोई मदद भी नहीं करता है। लेकिन अगर आप डिजिटल हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सक्रिय हैं, आप UPI के जरिए आपके बैंक में पैसे हैं, तो आप अपने मोबाइल में जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम इत्यादि जैसे ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं, तो UPI के जरिए आप कहीं भी अपने काम को निकाल सकते हैं। और अब तो श्रोताओं, सरकार पूरी तरीके से पेपरलेस काम करने जा रही है, यानी कि अब पेपर का उपयोग कम से कम होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। तो डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल अपने सपनों को सच करने, पढ़ाई करने और कैरियर बनाने के लिए कीजिए, लेकिन कभी कभी फ़ोन को साइड में रखकर अपने सामने बैठे दोस्त से बात करना बिल्कुल मत भूलिए। मत भूलिए आप बाहर जाकर खेलना, मत भूलिए अपने परिवार के साथ समय बिताना, क्योंकि इन सभी चीज़ों के साथ आपके परिवार को आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनके साथ जितना समय बिताएंगे, आपका उनके साथ बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। और जो आपके दोस्त हैं, आपके घर में आपके अभिभावक हैं, आपके भाई बहन हैं, उनसे आपका भावनात्मक रिश्ता भी काफ़ी बढ़ेगा। तकनीक से जुड़िए, लेकिन इंसानों से आपको कटना बिल्कुल भी नहीं है। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको जानकारी दी डिजिटल इंडिया के बारे में। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, आइए अब हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी हम आपका मनोरंजन कर रहे थे इस गीत के साथ। आइए इस गीत के बाद सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इन जरूरी संदेशों के बाद। आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम युवाणी का। एक आवश्यक सूचना श्रोताओं, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, ये प्यार और देखभाल से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं श्रोताओं, जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इस योजना को पालन पोषण देखरेख योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार के देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख की योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं, ये गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है पर एक अस्थायी व्यवस्था है, जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है, जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं श्रोताओं, तो आप भी पालक माता पिता बनकर इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि माता और पिता दोनों की आयु को मिलाकर के आयु का जोड़ 115 वर्ष का होना चाहिए। और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे का पालक बनना चाहते हैं तो उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। और एकल पुरुष, यानी कि अगर कोई पुरुष व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसे बालिका की नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं और आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, तो आप पालक माता पिता बन सकते हैं। पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। श्रोताओं, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाइए और उन्हें

एक अच्छा भविष्य दीजिए। श्रोताओं, इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवार को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे जुड़ी हुई अधिक जानकारी हेतु आप जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसका फ़ोन नंबर है 9955131364 और एक नंबर है 9090700489 पर आप संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चायबासा में आकर आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लें, फ़ोन नंबर है 9955131364, दूसरा फ़ोन नंबर 9090700489। इस नंबर पर संपर्क करके आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और इस सूचना के साथ ही श्रोताओं, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी ने भी ये इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो रहा है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सुगंध, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
8: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
10: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
11: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
10: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: हर घर सूर्य घर।
15: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां। परीक्षा सुधार और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों का विधानसभा मार्च, बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 8,399 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पारित, सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्यभर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब, देवघर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दूसरे दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जनजातीय जीवन पर आधारित फिल्में। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान आज रांची में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। इस बीच सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।

0: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो 9 दिन के अनशन के बावजूद एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे और स्ट्रेचर पर मार्च में शामिल हुए।
1: और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो आवाज उठाया हूँ, लाखों युवाओं का दर्द है जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, और सरकार घबरा गई है, डर गई है और कायर की तरफ पुलिस को आगे कर रही है, टियर गैस का प्रयोग कर रही है, तो इससे शासन नहीं चलता लोकतंत्र में। अभी भी समय है, 5 मिनट में सरकार फैसला ले और छात्र को संतुष्ट करे।
0: प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड सीआईडी ने कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के मामले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। वहीं हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस कार्रवाई और पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मामला और गर्मा गया है, जबकि छात्र अपनी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। सुरक्षा बलों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद सरकार की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
2: सभी परीक्षाओं से पहले ही प्रश्न पत्र लिखे जाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। विगत 17 दिनों से हमारे छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार को कोई सूझ लेने तक की फुर्सत नहीं है। वार्ता के नाम पर बच्चों को बुलाती है और सिर्फ उनका मजाक करने का काम करती है, कोई निचोड़ निकालने का काम नहीं करती है।
1: इस बीच विधानसभा में मंत्री सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हैक कर लिया है। उन्होंने छात्रों से दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।
3: तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। और यह सदन छात्रों के प्रति पुनः इस बात को प्रदर्शित करता है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, हम उनकी भावना और उनके उद्देश्यों के साथ हैं, वो वार्ता के टेबल पर आए, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है।
1: विधानसभा ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपए से अधिक के पहले अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। इसमें सर्वाधिक राशि ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
4: हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की जय वंदे मातरम। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे तो यह हमारी आन बान शान है।
1: उधर गिरिडीह जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री शालिनी वैश्ख्यार और स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है। आम जनता का कहना है कि इस अभियान ने तिरंगे को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाकर जन जन को राष्ट्र प्रेम और गौरव की अनूठी भावना से जोड़ दिया है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि देवघर में शाम तक 3,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर लिया था।
5: देवघर सामनी मेले के दूसरे सोमवारी को कांवरियों का जत्था लगातार बढ़ रहा है। शाम के 7 बजे तक करीब 3,10,000 कांवरियों ने जलाभिषेक कर लिया। कांवरियों की लंबी कतार शाम तक 10 किलोमीटर तक थी। श्रद्धालुओं को बेहतर ढंग से जलाभिषेक कराने की दिशा में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था में भी किसी तरह का दिक्कत न हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। पूरा देवघर केसरिया रंग से पटा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के साथ पूरा देवघर गुंजमान है। आशीष कुमार, अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
1: पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के 11वें दिन 9 अगस्त को 2,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की, जिसमें सुल्तानगंज स्टेशन पर सबसे अधिक यात्रियों का आवागमन रहा। महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे ने के निर्देशन में जसीडी और देवघर सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष ट्रेनों के साथ ही 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। रांची में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दूसरे और आखिर दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल के तहत जनजातीय जीवन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस सिनेमाई उत्सव में कुलुई भाषा की व्हाट आर यू सर्चिंग और लुक एट द स्काई जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग के जरिए युवाओं को आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत से रूबरू कराया गया। कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सैकड़ों जनसंचार छात्रों ने मास्टर क्लास में भी हिस्सा लिया। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 9 जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। अगले 1 से 3 घंटों में रांची, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां। परीक्षा सुधार और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों का विधानसभा मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 8,399 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पारित। सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। देवघर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जनजातीय जीवन पर आधारित फिल्में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग आवास पाकर बेहद खुश हैं और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: पहले मिट्टी का घर था, सरकार दिया तो घर बनाया। अभी सरकार दूसरों लेके बढ़िया से रहते हैं, पानी नहीं छूता है, बढ़िया अपना मकान से बना के बढ़िया से रहते हैं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, हम लोग को दिया घर बनाए, सब दूसरों लेके पक्का घर में रह रहे हैं।
1: राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की

0: सरकार ने गिरिडीह जिले को हाल के दिनों में 64 नए वाहन उपलब्ध कराए हैं। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि नए वाहन मिलने से पुलिस को अपराध रोकने में मदद मिलेगी।
1: टायल 112 को लेकर के जो गाड़ियां मिली हैं, जिससे पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो भी थाने हैं हर एक थाने को उसके आवश्यकता के हिसाब से और उनका एरिया के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। पूर्व में भी 32 गाड़ियां मिली थी, पिछला बार हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था, वो 32 गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और अब जो है विधि व्यवस्था को लेकर के लोगों के पास किसी तरह की समस्या है उस तक हम लोगों को पहुँचने में बहुत आसानी होगी और इसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक असर इधर हाल के दिनों में भी दिखा है। लोगों के द्वारा जो भी अगर कॉल किया जाता है डायल 112 में या हमारे कंट्रोल रूम में या जिला नियंत्रण कक्ष में, तो हम लोगों का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम हुआ है, जो पूरे स्टेट के एवरेज के से भी अच्छा माना जा सकता है उसको।
0: वन विभाग द्वारा समय पर एनओसी नहीं दिए जाने के कारण गिरिडीह में कई सड़क परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। कोडरमा की सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से उपाय ढूंढने का आग्रह किया है।
2: राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि राज्य के हित की बात जहां होती है, हमारे आदिवासी समाजों या जंगल में रहने वाले वैसे सभी लोगों के लिए कि बहुत ही परेशानी होती है जब सड़क नहीं होता, कितनी मुश्किल होती है महिलाओं को, जब अगर उन्हें प्रसव के समय हॉस्पिटल आना होता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई एक आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि उसमें हर विभाग जिससे भी एनओसी की आवश्यकता है जंगल में बसे लोगों के सुविधा के लिए, तो उसकी आप व्यवस्था कराएं, ये हम चाहेंगे। और आपने जिस गांव की ओर इंगित किया है, निश्चित रूप से हम इसको लेके भी विशेष रूप से जिला अधिकारी से भी हम बात करेंगे और राज्य सरकार से भी।
0: गिरिडीह जिले में हाल के दिनों में बरसापात में वृद्धि हुई है। बरसापात होने से धान की रुपाई में तेजी आई है। बरसापात के साथ साथ वज्रपात की घटना में भी वृद्धि हुई है। बीते मंगलवार को गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वज्रपात से एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
3: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आइए सुनते हैं विधानसभा समीक्षा।
1: प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों की अनुपस्थिति के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भोजनावकाश के बाद सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्तीय प्रबंधन की नीति आयोग ने भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में राज्य की राजस्व वसूली 25-26% रही है, जो संतोषजनक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय करों के अनुदान के बंटवारे में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को केवल 0.73% अनुदान राशि मिल रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रथम अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 4,258 करोड़ 67 लाख रुपए, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 885 करोड़ 83 लाख रुपए तथा पंचायती राज विभाग के लिए 244 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक एवं व्यसक शिक्षा प्रभाग के लिए 946 करोड़ 30 लाख रुपए, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 490 करोड़ 68 लाख रुपए तथा गृह प्रभाग के लिए 144 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग तथा ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान मद में भी राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति होने पर उन्होंने कहा कि सवाल देकर सदन में उपस्थित नहीं होना दुखद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी ने किसानों की संख्या के अनुरूप कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा उठाया। विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर बजटीय प्रावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिरसा बीज उत्पादन एवं वितरण, फसल विस्तार, समेकित बिरसा, ग्राम विकास योजना, किसान समृद्धि योजना तथा कृषि यंत्र वितरण जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और जोड़ा बैल वितरण योजना भी संचालित है तथा राज्य में पोल्ट्री फेडरेशन के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसानों को अब भेड़ पालन के लिए भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जोल्हा हिंदू, धुनिया और नदाफ जाति को राज्य की जाति सूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि इन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची एक में शामिल करने की कार्रवाई चल रही है और इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जयराम कुमार महतो ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बीसी 1 और बीसी 2 वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान के पालन का प्रश्न उठाया। प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि रिक्तियों और आरक्षण सूची के अनुरूप नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। विधायक राजेश कच्छप ने प्रश्न पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद से कहा कि आरक्षी चालक संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा से संबंधित कई मांगों पर सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र अब भी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन में शामिल उपद्रवी तत्वों की पहचान करने की आवश्यकता बताई। झामुमो विधायक लुईस मरांडी के सवाल पर प्रभारी मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए 1,20,000 रुपए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कच्चे मकानों के लिए 1,30,000 रुपए तक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया जाएगा। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।
2: आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

करते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद की शुरुआत और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है भिलाई छत्तीसगढ़ से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। बड़का काना से अफजाल ताज और साहिन सुल्ताना, मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर से अपनी फरमाइश भेजी नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पू लाल और वी के डांगी ने। लुधियाना पंजाब से हमें खत लिखा है अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिभा कौर ने।

हैं बेरड़ी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार। मोपका भाटापाड़ा के भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू ने भी हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। ग्राम बादुड़ी से इसी गीत को सुनना चाहा नारायण कुदादा, हेमा कुदादा, कैलाश कुदादा, सुषमा, पप्पू, प्रीति, विक्की और पुष्पा ने। पुरानी टोली जसपुर छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है मालती नागदेव, कुमारी सोनाली नागदेव, मयंक नागदेव, अनिमेश नागदेव और अंसल नागदेव ने। ये अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम फ्रांसी से और हमें खत लिखा है राजकुमार डोडी, सरजीत सिंह डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और हांसी शहर के राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। फिल्म लोफर के इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं जमशेदपुर से हरजिंदर, जमशेदपुर स्टेशन रोड से हमें खत लिखा है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया ने। चांडिल ग्राम हारूड़ी से तुलसीदास महतो, कल्पना मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो की फरमाइश भी फिल्म लोफर के इसी गीत के लिए हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, खास आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म लोफर से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

ये गीत आपने सुना फिल्म लोफर से। आइए इस गीत के बाद लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है खरसावा पति साई से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक, सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें भेजी वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चायबासा से, और हमें खत लिखा है भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सन्नी मधुर ने। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। लालपुर मारो से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पोंडा काटा से, और हमें खत लिखा है नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सोरेन, सुहानी देवी, संजय सोरेन, पातोर बांकीड़ा, डोली बांकीड़ा और रघुनाथ चरहट ने। एकता कॉलोनी रोहतक से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। रेलवे रोड गंजू डबरा के मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बड़विल ओडिशा के सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म नूरी का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बटिंडा रोड डबावली के राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। PM City बनारस UP से इसी गीत को सुनना चाहा आजिन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित, हर्षित, पुलकित और पूरे परिवार ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान के बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष की फरमाइश भी

में इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। कुचाई ग्राम इचाहातू से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं घोलाराम लुवादा लुधरी सोमनाथ पूर्णिमा लालमुनि बिंजना और लुवादा परिवार के सभी लोग। ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो पेमी और गोविंद जीतो साइमन की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कमरुल्ला नसीम बेगम आयसा खान हादिया खान आसमा सालिया सोएब खान मुस्तफा खान राउफ भाई और साहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम तक भेजी है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नवनीत राय अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से सुपचंद बजाज बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म नूरी से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

0: फिल्म नूरी के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस छोटे से विराम के बाद। आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का, आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है गांव चांदपुर पोटका से, और हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, आयुष भगत, राजू और बसंत कुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला के सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। मुसाबनी से हमें खत लिखा कमल भगत, रूपाली भगत, सनी, सोनू और अर्णवराज ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है मोहल्डिया सोनवा झारखंड से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा के गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा रिंगनी छत्तीसगढ़ से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और ची डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। बेरेडी से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म आईना का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार लता मंगेशकर ने, और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम बठेना पाटन से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली, शिवम। चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहाद्र वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। इसी गीत को सुनना चाहा न्यू कॉलोनी डूंगरी तसर फॉर्म रोड चाईबासा से रश्मिता राउत, मधुस्मिता राउत, प्रकाश जायसवाल, रीना जायसवाल और वैष्णवी कुमारी ने। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। पटेल नगर मलोट पंजाब से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें खत लिखा है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने। खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। आमकोंडा रिंगाखर से हमें खत लिखा है राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम, चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम। अस्तुपिरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सदीक सादिक और बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद की फरमाइश भी हमें फिल्म आईना के इसी गीत के लिए मिली। फिल्म

इसी फिल्म के गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हम तक भेजी नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। किशनगंज बिहार से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु। कोट रोड बागपत से हमें खत लिखा है यूसुफ आजाद, वसीला, साहिल आजाद और अंजुम नाज। बंसाई चायबासा के परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, अमृता कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, शिवा मीना कुमारी, शिवम खंडायत, शिवा खंडायत और सोनाली खंडायत की फरमाइश भी हमें फिल्म आईना के इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म आईना से। आनंद दीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म आईना के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा का। तो आइए इस कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थम्बीदुरई और डॉक्टर एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम

बिदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेनदेन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जे संग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉक्टर कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शन का

सरकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में तीन अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी के भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा।
सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963

0: में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज आकाशवाणी।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित संसद समीक्षा, आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 8:15 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम रजनीगंधा में। आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है वोट जरा नैला से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, मेरी टोला चायबासा से विशाल कच्छप और दुलारी बिरुली ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। रेलवे कॉलोनी बटिंडा पंजाब से हमें खत लिखा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोगों ने। इचलकरण जी, महाराष्ट्र के बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से हमें खत लिखा है नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोद्रा, अर्जुन बोद्रा और रवि बोद्रा ने। गांव धुराबांदा भाटापाड़ा से हमें खत लिखा प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू ने। बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई के देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देविन प्रधान की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अन्नु बनवाली, सिद्ध कुमारी और पूजा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है अल्जियार अब्राहम, उज्जैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, क्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम, जोजफ रूफट, अविनाश छेत्रपाल, सिद्धार्थ गुंडा ने, हीरामन सिंडे और उनके साथियों ने। बड़ा बाम्बो जोडिया से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मोइना महतो, डिम्पी महतो और राहुल महतो। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार के ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज शाह ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म कामचोर से। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांव ग्राम पैजनिया, तहसील को जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया। पुरानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं नौसाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी जी।

फिल्म कामचोर के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। मलोट कैंप पंजाब से सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, किशन, लखविंदर संधु, महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से हमें खत लिखा है प्रमिला श्याम कुमार, श्रीमती अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार ने। चायबाजा के मोहम्मद समीम अख्तर, इकबाल भाई, लीलू खान और महमूद आलम की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। मैं रेडियो श्रोता सिंह नवागढ़ कटाई से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा और दामिनी वर्मा। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से हमें खत लिखा है रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत और गुरशब्द ने। गांधीग्राम से हमें खत लिखा प्रवीण सोनी, जगदीश सोनी ने और टावर चौक गुमला से एसएम जावेद, सगुप्ता अंजुम और जेनिस जौहरी ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है गांव चौहलदा बागपत से और हमें खत लिखा है संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल की फरमाइश भी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत है। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा काजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी इसी गीत के लिए मिली। शेरपुर कलाम गाजीपुर से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरेंगी के द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और बरसिंगी बुलढाणा के अमोल मानकर, सुभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली की फरमाइश भी इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। मछली गोदाम कैंदीमुड़ा रायगढ़ के पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और ऋषभ सिंह ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। ग्राम नवागांव मुढ़ई पार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं संतोष साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, सोहन साहू, श्री

पति शांति साहू, तेजेश्वर टाकेश्वर कुसाल और तुलेश साहू, ग्राम मन बघेरा राजनांदगांव से ही हमें खत लिखा योगेश शारवा, श्रीमती आशा शारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि शारवा ने। बिलासपुर देवरी खुर्द से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाजें हैं मनप्रीत कौर, पमीला चोपड़ा और साथियों की।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है महाराजा रेडियो श्रोता संघ से, जिला खंडावा ग्राम लोहारी से, और हमें खत लिखा है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, सीला धनजे और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। पाकुड़ झारखंड से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, यशु और तासु। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, और हमें लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बदलापुर मुंबई से हमें खत लिखा है सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुक टुक गवांडकर ने। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ के जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फूलजी यादव और यादव परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुसार और प्रभा देवी तामोरिया ने भी हमें खत लिखा है। बड़ा बाम्बू गोपालपुर से अपनी फरमाइश भेजी संतोषी महतो और जय कुमार महतो ने। बड़ा निमड़ी चायबासा के तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार और सुमित कुमार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। आमजोड़ा मालुका से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म आशिकी से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार कुमार सानू ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं लच्छनपुर से जीवन लाल रजक, सरोजनी रजक और रामजी साहू, बाबा कुटी रायगढ़ के शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान और भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू और नीलिमा साहू ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तुरी टोला चायबासा से अपनी फरमाइश हमें भेजी मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने। ग्राम दलाई किला खरसवा से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरिजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनीमाई सोए। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से अपनी फरमाइश हमें भेजी है विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, रमा पुरी, वीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी और आरएस पुरी ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है आमला टोला चायबासा से, और हमें खत लिखा है गौरव प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से, और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रीक्षित, शशिकांत, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु रितिका, नीरज रिचा, चित्रंजन उमेश, सरोज रेखा, ऋषभ राजावत और राजावत परिवार के सभी लोगों ने। गांव हंडेरा से अपनी फरमाइश भेजी मानता राम सिंह कोंटिया ने। करेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, सालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोग। बागपत यूपी से एहसान अली की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहटी बरेली से खत लिखा विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं यूनुष खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, कासिफ हासिम और इरफान मीना। अनारकली बाजार जगराओं के सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और जयपाल यादव ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। सिमधर पार्क विरमगाम गुजरात के अजीत, प्रेमिला भावेश, सनी भावसार, हेतल कृष्णा और जयमिन भावसार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत गायक कलाकार कुमार सानू के स्वर में फिल्म आशिकी से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, फिल्म आसिकी के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do,
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
6: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
7: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
8: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
9: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। भविष्य रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
10: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के

0: प्राण लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता वैसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेटे निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के

0: ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारा सराना और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जेएसएससी सीजीएल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल कियांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुक्ताचीनी की है। नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस साल 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के ताउन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीखी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरकीब दे रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिससे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमूई अज़्म का इआदा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगा आबनाए हुरमुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबनाए हुरमुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसिर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक़ राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। एफआईएच मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तिदाई मरहले के नतीजे अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दें।

0: झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। सर सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा, एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और शत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आमतौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है

0: हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ डॉक्टर अनिल, कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का, जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
2: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब यह होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो, या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है, जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
0: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
3: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश, और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
0: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
1: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं, तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति, जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है, तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
0: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिली गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने, वो आप तक पहुँचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में, कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
1: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटों की वेबसाइट पे जाके आप अंगदान 1 मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र 1 मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो

0: फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा करके कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो तो।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंग दान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंग दान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंग दान नहीं हो सकता है।
1: जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार सहनी। जी विजय जी, कहिए। जी प्रश्न पूछिए।
4: हाँ,
1: विजय
4: जी। हाँ मनीष जी।
1: जी
4: मनीष जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार,
5: नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील और जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंग दान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंग दान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं।
0: तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंग दान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, noto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा। एक मिनट का आपके, उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉल

0: पे वहां पे बैठा है, वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत जरूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये इसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत झाकड़े। जी श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: हेलो
1: जी। जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं श्रीकांत झाकड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या?
1: जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
3: जी। अच्छा श्रीकांत जी, कि आपका आपकी जो नजर गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नजर पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331048 और 2371717 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह। जी चौधरी साहब, बताइए क्या है आपका सवाल।
4: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
3: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं।

0: और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो हाँ, पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था, वहाँ कर सकते हैं। और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओ, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये जो अंगदान का जो एक प्रोसीजर के बारे में पूछना था, जैसे कोई एक आदमी आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसने क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसने क्या रोल होता है। थैंक यू।
0: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज़ है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770, 2400 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगे। जी
1: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
3: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिक क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी,
0: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफ्थैल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थैल्मस में पुतली भी खराब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फायदा नहीं होता है।
1: जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्कार। नमस्कार।
4: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी।
1: आपको भी
4: जी। मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना % डोनेट कर सकते हैं, पर प्लीज बता दीजिए
1: जी। हमारा जो देखिए आज का विषय है,

0: उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
1: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है। और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
0: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044। और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए। और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
0: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
1: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान की स्नेक मुहिम के लिए आगे आना।
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
1: धन्यवाद
0: शर्मा को। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की

0: करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं। ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है, और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव
2: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage, and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
0: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
3: Sabhapati Mahoday. पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। से लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है, और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा, और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब से हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोत्साहन मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था, और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, अभी फाइनलाइज करने के राह पर है। और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर

0: जीएसटी फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय इसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड इसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न है। सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लान परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम जिसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है जो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सतरन सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर

0: 600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, सवाल भी पूछना चाहूँगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
1: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रख करके बनाती हैं। पंजाब के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी रिफॉर्म की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की रिफॉर्म की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता REC से PFC से थी, लेकिन REC PFC एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहाँ तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो उतरते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूति पर सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है, और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 16 अगस्त को 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
0: श्रीमान विजय खंडकालिया जी, श्रीमान विजय खंडकालिया जी,
2: धन्यवाद जी, धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the central transmission utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the planned capacity of future expansion.
1: Honorable Minister, Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइन तय की है, और नई गाइडलाइन मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहाँ की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहाँ कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहाँ इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहाँ कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
0: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ।

0: पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर का जो ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहाँ तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब दे।
2: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:19 हो रहे हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल।

कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम महफिल में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फनकार नुसरत फतेह अली खां के स्वर में गाई हुई ये गज़ल। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम की यह पहली गज़ल।

फनकार नुसरत फतेह अली खां के स्वर में गाई हुई इस गजल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

सुरों के रंग। करते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग की शुरुआत गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में गाए हुए फिल्म अमानुष के इस गीत के साथ।

दिल अपना और प्रीत पराई, ये गीत आपने सुना इसी फिल्म से। आवाज़ थी गायक कलाकार लता मंगेशकर की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म नमक हराम से।

फिल्म नमक हराम से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म नील कमल से।

0: गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाए हुए फिल्म नील कमल के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं समाप्त होता है।
1: पुकारे मेरा प्यार।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग, यह आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

0: विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on